0: ଶରୀରକୁ ଯେପରି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ, ସେହିପରି ମନକୁ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉ शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्रीचंडी ने

0: सात रन देकर तीन विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce at Delhi University yesterday evening. Mr. Modi said, "India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength." He said, "India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism." He said, "The world is watching India become the fastest growing major

0: शत्रून् विरुद्धं दृढतया प्रहारं कुर्वन्ति। जम्मू कश्मीरतः पूर्वोत्तर भारत पर्यन्तं शांतिश्च पुनः स्थापिता अस्ति।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: निरंतर क्रियमाणानाम आलोचनानां प्रत्युत्तर रूपेण प्रधानमंत्री सुदृढार्थिक तथ्यांकान् प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान् यत् स्मार्टफोन इत्येतस्य निर्यातः अधुना 15.2 लाख करोड़ रूप्यकाधिकः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यनेन महाविद्यालयेन विगतेषु वर्षेषु शैक्षणिकोत्कृष्टतायाः क्षेत्रे विशिष्टा प्रतिष्ठा प्राप्ता अस्ति। असौ एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रान् अति विशिष्टान् वर्णयन् तान् ओजीज इति विशिष्टाधुनिकोपाधिना सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्व वित्तमन्त्री अरुण जेटली अपि एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रः आसीत्। असौ एतदपि कथितवान् यत् अस्य महाविद्यालयस्य पूर्व छात्राः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वकीयं विशिष्टं चिह्नं स्थापितवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् शतवर्षीयम् इदं महत्वपूर्णं चरणं महाविद्यालयस्य तथा राष्ट्रस्य शिक्षाक्षेत्रस्य च कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। असौ संस्थापकं श्रीरामं श्रद्धया स्मृत्वा तस्य स्थायिदृष्टिं प्रति सम्माननं प्रकटितवान्। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया ह्यः डॉक्टर दिनेश शर्मा इत्येषः अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण नियुक्तः। राष्ट्रपति भवनेन प्रसारिते एकस्मिन् विज्ञप्तौ एतत् संसूचितमासीत्। डॉक्टर शर्मा 17.2 वर्षस्य अक्टूबर मासात् अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण कार्यं कुर्वन्तं सेवानिवृत्तं एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशीम् अनुसरिष्यति। डॉक्टर शर्मा सम्प्रति उत्तर प्रदेशतः राज्यसभा सांसदः अस्ति। असौ पूर्वं राज्यस्य उपमुख्यमंत्री पदमपि अलंकृतवान्। भारत नेपालयोः उद्धार दलानि चिलिमे सुरंगे उद्धार कार्यं निरन्तरं कुर्वन्ति। नेपालस्थितः भारतस्य राजदूतः नवीन श्रीवास्तवः ह्यः उक्तवान् यत् उद्धार कार्यं सुकरं कर्तुं समीपस्थस्य स्याब्रुबेसी प्रदेशात् सुरंगस्य प्रवेशद्वार पर्यन्तं सम्पर्क मार्गस्य निर्माण कार्यमपि प्रचलति। भारतर्तो विज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् उत्तर पूर्वीयेषु राज्येषु उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम बिहारोत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा पूर्व राजस्थान दिल्ली मध्य प्रदेशेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 7 स्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।
2: कार्यक्रम रिले करी शुणिलु आकाशवाणी सम्बलपुर एवं परपुर शुणिले संस्कृतिरे संवाद आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु आकाशवाणी भवानी पटना श्रोतबंधु एथर आसंतु जानिनेबा आम केन्द्ररु आज प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रमर सूचना कोनि कोनि पिलंक पई सारगफुल कार्यक्रम प्रचार करिबु सकाळ 7:25 सांथाकवि भीमभईंक कृति उपरे आधारित स्तुति चिंतामणि शुणिबे सकाळ 8:30 ফোন ইন কার্যক্রম হ্যালো আকাশবাণী ভবানীপাটনা সকাল 9:00 পূর্বাহ্ন 10:10 প্রচার করব স্থানীয় খবর ও মধুর গীতর কার্যক্রম খোলা চরকা দিন 12:30 শুণবে সুগম সঙ্গীত চাষর কথা দিন 2:10 দিন 2:20 প্রচার করব ওড়িয়া আলবম গীত হিন্দি কথাচিত্রর গীত শুণবে দিন 2:45 ଅପରାହ୍ନ 5:00 ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦୟ ଭାରତ ଯୁବବାଣୀରେ ମନୋରଞ୍ଜନୀ ଶୁଣିବେ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ଆଦିବାସୀ ଗୀତକ୍ରମରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ କୋଟିଆ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30

0: सेवा पाई नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होइतिबा ओडिसा यूनिफॉर्मड सेवा कर्मचारी चयन आयोग कहिछि। पुलिस सेवा परीक्षा 2024 संक्रांत परीक्षा प्रक्रिया को त्वरान्वित करा जाउथबा आयोग कहिछन्ति। नियुक्ति प्रक्रिया संक्रांत विस्तृत विवरणी तथा अन्यन्य नियमावली प्रसंगरे खूब शीघ्र आवश्यक सूचना प्रकाश करा जिवो बोली आयोगक पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परिवेश जंगल जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पक्षरु स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार तालिका प्रकाश पाई एथिरे राज्यर चारोटी शहर स्थानित होती। 3 लाख कम जनसंख्या विशिष्ट वर्गरे कलिंगनगर शिल्प शहर तथा व्यासनगर को प्रथम पुरस्कार पाई मनोनीत करा जाइछि। एही वर्गरे अनुगुल द्वितीय एवं तालचेर तृतीय स्थान हासिल करिछि। 4 लाख अधिक जनसंख्या वर्गरे राउरकेला प्रथम स्थान अधिकार करिछि। स्वच्छ वायु दिवस पालन अवसरें आसंता 7 तारीख नूआदिल्ली एही पुरस्कार प्रदान करा जिवो। देशर मोट 132 शहर को नहीं एथिपाई सर्वेक्षण करा जाई थिला। भुवनेश्वर ठारे ओडिशा राज्यस्तरीय बैंकर्स कमिटर 184 बैठक गतकाली अनुष्ठित होइजैछि। उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव देवरंजन कुमार सिंह अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में जुलाई मास सुधा त्रैमासिक कार्यदक्षता समीक्षा करा जिला प्रशासन सह समन्वय माध्यम बैंकगुड़िक चलित आर्थिक वर्षर धार्य लक्ष्य हासिल करने को श्री सिंह परामर्श देइछन्ति। शिक्षा प्रशासन को सुदृढ़ करिबा एवं विद्यालय शिक्षार गुणवत्ता को उन्नत करिबारे उत्कर्ष प्रतिपादन करिथिबा देशर विभिन्न प्रांतर शिक्षा अधिकारी जातीय पुरस्कार सम्मानित करा जाइछि। नूआदिल्ली स्थित जातीय शिक्षा परिचालना एवं प्रशासन प्रतिष्ठान पक्ष आयोजित समारोह में राज्यर 7 जन शिक्षा अधिकारी पुरस्कृत होइछन्ति। विद्यालय शिक्षा प्रशासन को सुदृढ़ नवसृजन को प्रोत्साहन एवं गुणात्मक शिक्षागत फलाफल को सुनिश्चित करिबारे सरकारको प्रयास को एभली मान्यता प्रतिफलन करुछि बोले विद्यालय गणशिक्षा विभाग कमिशनर तथा शासन सचिव डॉक्टर एन तिरुमल्ला नायक कहिछन्ति। राज्यर स्वयं सहायक गोष्ठी उद्योग को अणकृषि क्षेत्र में व्यवसायर विकास नूतन रोजगार सृष्टि एवं जीविका को सुदृढ़ करने सरकार ओडिशा इनक्यूबेटर पदक्षेप आरंभ कर सरकार पक्ष विभिन्न प्रकार सहायतामूलक व्यवस्था प्रदान पदक्षेप अधीन मोट 150 जन उद्योगी मनोनीत होष्पत्ति एसंता 21 तारीख सुधा आवेदन करने को सरकार पक्ष परामर्श दी। आवेदन संक्रांत संपूर्ण बरणी ओडिशा जीविका मिशन मिशन शक्ति विभाग वेबसाइट रे उपलब्ध रही। भुवनेश्वर ठारे जातीय स्तरीय क्षुद्र चलचित्र महोत्सव सामर्थ 2026 गतकाली आयोजित होइजैछि। राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा एवं भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्ष आयोजित यह महोत्सव में दिव्यांगजनक प्रतिभा इच्छाशक्ति एवं सफलता को सम्मान जनाइबा लक्ष्य नहीं चलचित्र निर्माता अधिकारी कलाकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता एकाठी होइथिले। महोत्सव पई 20 जातीय एवं 42 आंचलिक स्तरर मोट 62 सिनेमा दाखल होइथिला। 38 चलचित्र को प्रदर्शन पाई मनोनीत करा जाई थिला। पुरी श्रीमंदिर में जन्माष्टमी ठारु आरंभ होइथिबा श्रीकृष्ण लीलार आज दशमी तिथि अवसर में ठाकुर बणभोजी बेश अनुष्ठित हेबो। गोपलीला समय कृष्ण और बलराम गाई बाछुरी को नहीं बणभोजी जाइथिबार पुराण वर्णना आधार में ठाकुर बेश अनुष्ठित होइथाय। मध्याह्न धूप पर ठाकुर बेश प्रक्रिया आरंभ हेबो। कार्यक्षेत्र में महिला सुरक्षा संपर्कित आईन पर आधारित एक जिलास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गतकाली नवरंगपुर मिशन शक्ति सम्मेलनी पक्षर अनुष्ठित होते विभाग जिलास्तरीय अधिकारी जोगद आईनर विभिन्न दिग उपर आलोकपात कर आंचलिक संवाद वर्तमान शेष होगा। आम परवर्त आंचलिक संवाद शुणिपारे अपराह 2:32।
1: आकाशवाणी कटक आमर स्वास्थ्य आज शुणु मधुमेह रोग से खाद्य ए संपर्क में आलोचना कर डाक्तर शिवानी कुमार सेन।
2: मधुमेह बा डायबिटीस रे आक्रांत व्यक्ति निजर जीवनशैली रे परिवर्तन आणिबा संगे संगे उपयुक्त खाद्य चयन करिबा अपरिहार्य। उपयुक्त खाद्य दैनिक व्यायाम और औषध प्रयोग द्वारा एही रोगर उपद्रव को प्रतिरोध करिबा सहज होइथाय। रोगरे पीड़ित साधारण परिश्रम करुथिबा व्यक्ति दैनिक 1600 किलोकालोरी और अधिक परिश्रम करुथिबा व्यक्ति को 1800 किलोकालोरी खाइबा को परामर्श दिया जाए। पुरुष माने दैनिक 40 ग्राम और स्त्री माने दैनिक 200 ग्राम तंतु बा रेसा खाद्य खाइबा आवश्यक। अधिक परिश्रम करुथिबा स्त्री लोकमानंक ठारु गर्भवती स्त्री को मध्य अधिक

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी

0: करेंगे।
1: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
2: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है, और हमेशा मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
6: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित

0: निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
2: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
3: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जलडबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमेरिका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमेरिका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
5: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ

0: है नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से आईआईटी मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू एआई एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन एआई और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर एआई की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा एआई, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, एआई को दोस्त बनने से रोके और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आए ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला T20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shriram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi. On the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month, over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
3: कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
2: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees.

ए भजन परी भीम भईंक सह सह भजन रहिछि। भीम भई भजन नुआ अनुभव तयारी करे, तीर भेदिबा परी भितरकु भेदि जाए, धोबा जेमिति तुठरे लुगा निखार करे। भीम भई भजन सुनिला लोकर अंतरकु सेपरि सफा करि दिए, खाली आम अंतर से प्रकार परिच्छन्नता ग्रहण करिबाकु प्रस्तुत थिबा कथा। गोठ आड़ाइबा परी आमकु हेट हेट करी ठिकणा बाटकु नै जाए ए भीम भई भजन।

0: हेलो
1: हेलो आज्ञा नमस्कार
0: नमस्कार
1: मुई करमसानी साहब कहुचे ग्राम चिरंगा मुंडा पोस्ट लाग मुंडा थाना विजयपुर जिला बरगढ़
0: केमते अछंति आपण
1: मैं पूरा बढ़िया अछे ने आ आपण माने केनता अछो
0: आमे समस्त भी भल रे अछो आ आपण का अंचल रा हालचाल केमते
1: हालचाल तो सब ठीक अछे आरो इटा तो मेघवा पाग रखी छे
0: हां मेघ तो माने वर्षा एबे टिके माने कमी छे
1: हां टिके कमी छे
0: कमीबा दरकार भी चासो बासो बाकी सब जिंस लागि
1: हां नै
0: आमे वर्षा को खोजु थाउसी ना किंतु जते बेले जो जिंस भी बहुत अधिक आ जाय सते बेले प्रॉब्लम स्टार्ट हे जाय
1: हां हां
0: जो माने चासो बासो करू चंती जो माने पनी परिबा चासो करू चंती तांका लागि खरा निहाती दरकार एबे
1: हां नै खरा तो नि हला तो खाली पैन खाली हवा बोले तो सब नै होय नै
0: हां सब जिंस रो सते लागि गोटे कह माने सब जिनस बैलेंस रहबा दरकार
1: हां नानी
0: आउ कहो तो कौन करूचंती एबे आपण
1: मै के जिने को बार इदा तो रेडियो सुना सुने करते आ रे
0: ठीक अछि को गीत सुनबे कहो तो
1: आज गीत को देबे अमर भजन ते देबे
0: ठीक अछि आपण को मो सत्यम शिवम सुंदरम रा जसमती मैया सुनि देउछि
1: हां नानी
0: फोन करते बारे बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 1, 2, 3, 4.
1: सुनो, चाय नियो। अरे चाय नियो मो।
2: देलो।
1: कौन है मिति गणी पकाऊ चाहे?
0: अरे खबर कागजर चारी पृष्ठा उल्टे लेनी, स्थानीय खबर गोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इतने कहीं की, आमो रेडियो टा ऑन कलनी? मीडियम वेव्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आमो आकाशवाणी भवानी पटना ट्यून करो प्रत्येक दिन सकाळ 10टा बजे 10 मिनिट रु 11टा बजे 10 मिनिट जाए स्थानीय खबर आ मनपसंदर गीत को नी कार्यक्रम खो

0: हेलो
1: जय सीताराम आज्ञा जय सीताराम
0: जय सीताराम मो तो जानिगलिनी आपनको तथापि आपनकर परिचय आपनको मोहरे दे दियंतु
1: आज्ञा रविंद्रनाथ मेहर मोहला कोटा भेलन ब्लॉक बरगढ़ जिल्ला नो कहू जाय आज्ञा
0: केंती अछंती आपन
1: आज्ञा भल अछे और पागो तो याजिन सुखिला होजे कालठानु वर्षा बुरके नै आज्ञा बढ़िया लागु जे पागोटा वर्षा नो आज्ञा बिदबिता लागि जाउथिला
0: बहुत वर्षा हि गला
1: आज्ञा देखुन से जेष्ठ पुनी रु वर्षा हला जे पूरा 2 मास कंटिन्यू
0: पूरा 2 मास पूरा लगायत वर्षा एंती कोनसी दिन नै जो दिन वर्षा हेने
1: वर्षा ना रे हां आज्ञा पूरा वर्षा आमे आपन को स्टूडियो को जाई थिलु गला वर्ष
0: आमे
1: भूली जाई थिलु से दिन तो ऑफिस छुट्टी थिला बोले आउ ई वर्ष आमे जाई थिनु आज्ञा ब्रह्मपुर जाई थिलु
0: अच्छा
1: ब्रह्मपुर गलु तारा तारिणी मां को दर्शन करलु भैरवी मां को दर्शन करलु स्टूडियो बुललु वर्ष को आमे गुटे गुटे स्टूडियो निके जायसु आज्ञा आपन मान कर लागि खाली साक्षात हवाल लागि
0: माने एटा त आपन मान कर भल पाइबा आमो प्रति
1: आज्ञा आज्ञा ई जन आमर आपन कर आमर भितरे जन गुटे ई रेडियो माध्यम रे जन बंधन रो जन डोरीटा लागि जे इता के आज्ञा छिड़ाई ना हवार के
0: ए जो मुकाजी परा एटा उठे माने बहुत सुंदर बंधन बहुत सुंदर संपर्क जे संपर्क रे माने आपन माने हमकू देखिनांती आमे आपन को देखिनो किंतु तथापि कार्यक्रम माध्यम रे आपन मान को आमे भल भाव रे चिन्ह जाइछु
1: आज्ञा
0: हुए तो भविष्य रे देखा हबो कि न हबो सेटा समय कहिबो किंतु आपन कर कंठस्वर माने सुनिले आमे जानि जाउ जे हमर एई श्रोता हमकू फोन करिचंती
1: आज्ञा इटा त आज्ञा भाव आदान प्रदान रो मजा
0: एटा त माने एई जो कार्यक्रम रो एटा ही त माने कोन कहंती तार मूल भित्ति जे आमे भाव रो आदान प्रदान करिबा गीत सुनिबा गोटे द्वितीय जिंस किंतु कथा वार्ता हबाटा होची प्रथम माध्यम हमर
1: गीत सुनबाटा गोटे माध्यम है
0: हां एटा गोटे माध्यम आ बहुत भल लागे जते बेले आपण मान कठारो एमती मीठा दी पद कथा सुनिले अमर भी आमो भितरे गोटे कार्यक्रम को सुंदर भाव रे भेटि देबार गोटे आग्रह जन्मे आ लागे जे जो कोन रे भी हमर श्रोता भाई भणी अछंती जो माने के हमको बहुत भल पांती आज को गीत सुनिबे कहंतु
1: आज्ञा हिंदी फिल्म रो गीत टे सुनमा लोफर
0: ठीक अछि
1: लोफर रो गीत रो बोलटा हो जे कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे पग बंद गया घुंगुरु मैं छम छम नाचूंगा बिया
0: बहुत सुंदर गीत टे आपण अनुरोध करि चंती आ आपणकर अनुरोध रो गीत आपण सुनि नियंतु फोन करथिबार बहुत बहुत धन्यवाद
1: आज्ञा फिर जदि केबे सुविधा आबा बोले आपनको स्टूडियो आड़के फिर जिमु आइ
0: निश्चित भाव रे आपनको निमंत्रण रहिला आपन आसंतु किंतु छुट्टी दिन जंती न हेथिबो आपन एठी हमर जो भी कर्मकर्ता थिबे आपन तांको साक्षात करिबे खुशी लागिबो आपनको आकाशवाणी भवानी पटना
1: जे हमकु दुख लागला आमे सामनारु फोटो फुटा उठालु और पोले आइलु
0: आसंतु केबे देखा हेबो निश्चित भाव रे
1: हो आज्ञा रहली आज्ञा जय सीताराम

0: श्रोताबंधु एठी नेइजिबा एक छोट बिरती
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: हेलो
4: हेलो
3: किए
5: आपणक सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूतिर कथा
3: आम सह कथा हुवंतु फोन माध्यमरे प्रत्येक गुरुवार दिन 11:30 पर्यंत
5: आम फोन नंबर हैला
3: 0660725623 2956628 मने एवं एहार प्रसारण सुनंतु प्रत्येक रविवार दिन सकाळ 9:00-10:00 पर्यंत।
6: हेलो
4: हेलो
6: किए
5: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना।
7: हेलो
8: अपा नमस्कार।
7: नमस्कार आपणकर परिचय दियंतु।
8: अपा मु बरगढ़ सन प्रभाकर कहूची।
7: अरे बाप रे बहुत दिन परे कथा हेली आ आज जानि छथि सन्न प्रभा भौनी आज हमर बहुत श्रोता जनक बरगढ़ रो ही कनेक्ट हो छथि हम सहित।
8: धन्यवाद अपा मु सते बहुत दिन कथा छी अवश्य नारी महल लागे मोर नारी महल कथा हो
7: आपण नारी महल त कथा होंती मु भी जानि छी आपण अनेक समय रे किंतु मु बहुत दिन परे आपनक सहित कथा होची।
8: हां अपा हां बहुत दिन परे मु त एबे लागु नथिला एबे केबे भी लागु नथिला आज भाभीली आज ट्राय करे जय मां मानी के
7: ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ହାଲଚାଲ କେମିତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ୟା ଭିତରେ କାମ ଦାମ?
8: କାମ ଦାମ ତ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି ଅପା, ସବୁ ଯେମିତି କାମ ହବା କଥା ସବୁ ହଉଛି, ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ବର୍ଷା ତ ହଉଛି ଅପା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସେମିତି ବର୍ଷା ଛାଡୁନି, ଦିନେ ଦି ଦିନ ଯେମିତି ଟିକେ ଛାଡି ଯାଉଛି ପୁଣି ବର୍ଷା ହଉଛି। ତ ଚାଷ କାମରେ ବି ଟିକେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏଇଟା ପାଣି ବେଶୀ ଜମି ଯାଉଛି ପଲ୍ହାରୁଆ ପଲ୍ହାରେ, ତ ସେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇ ବସିଲାଣି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଅପା, ଏମିତି ତ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବି ଆଗକୁ ଅଛି, ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସବୁ ସବ ମୁଖର ହଉଛି, ତ ପରିବେଶ ଭଲ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ
7: ପୁରା ମାନେ 2 ମାସ ହେଲା ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲାଗିଛି। ଏମିତି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଇନି। ଆପଣ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା 2 ମାସ ହେଲା ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଛି। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବି ଶ୍ରୋତା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଟା ଯେତେ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ବି ହେଇଥାଉ।
8: ଆଉ ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକରୁ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଧାନ ଅମଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ସେଇଟା ପୁଣି କ୍ଷତି ସହିବେ ଚାଷୀମାନେ। ତ ଏମିତି ହଉଛି ସବୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
2: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के एक अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज तड़के उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को व्यक्त

0: व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया था। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1344 हो गई है। इस घटना में 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। नोवाकोट जिले में 10 दिनों तक कीचड़ और मलबे के नीचे दबी एक 60 वर्षीय महिला को बचा लिया गया। मृतकों की पहचान के लिए कई मामलों में डीएनए परीक्षण का सहारा लिया जा रहा है। महिला क्रिकेट में दुबई में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां टी20 मैच था। वो पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान है। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के ही हे जी टिंग और रेन जियांगजू की जोड़ी से होगा। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अर्जियन अयूब और टैन वी कियोंग को हराया था। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, कर्नाटक के भीतरी हिस्सों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
2: आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy.
2: देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
1: The Prime Minister said SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. Prime Minister Modi travelled by the Delhi Metro as he headed to SRCC to participate in the college's centenary celebrations yesterday evening. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma has been appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral D.K. Joshi, retired, who took over as Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands on October 8, 2017. Dr. Sharma, 62, earlier served as Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. His Rajya Sabha term was to end on November 25th. A Rashtrapati Bhavan communique issued last night said that Dr. Sharma's appointment will come into effect from the date he assumes charge of his office. In Chhattisgarh, the National Investigation Agency's special court in Jagdalpur has convicted all 10 accused in Jhiram Valley Maoist attack case under various charges. A total of 11 accused were tried in the case, of whom one died during the trial. The court found all 10 accused, including two women, guilty of the murder of 29 people and attempt to murder 15 others. The order of the quantum of punishment has been reserved for September 16th. In May 2013, Maoists attacked a convoy of Congress leaders in Jhiram Valley. 20

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: ए पर्यंत यही योजना रे 9,50,00,000 रु अधिक लाभार्थी जोड़ी ही सारिलेनी। जदि आपण 18-40 वर्ष बयसर होइथांति तबे मासिक अटल पेंशन सहित तीनोटी ग्यारंटेड सुविधा विषय रे जानिबा पई आपणक बैंक शाखा सह जोगाजोग करंतु।
2: सब बैंक रे

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर सरंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में आज दोपहर 1:50 पर भारतीय जोड़ी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में महज 55 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने 8 ओवर और 4

0: मृत्यु संख्या 1344 को वृद्धि 590 जन विदेशी नागरिकों समेत 5000 लोक निखोज थिबा सूचना ए पर्यंत उद्धार हेलेनी 13100 रु अधिक लोक रूस एवं युक्रेन मध्यरे शांति स्थापन प्रक्रिया अंश स्वरूप आज किव गस्त करिवे अमेरिकी राष्ट्रदूत मध्यप्रदेश सागर जिले में विषाक्त मद्यपान जोगु 9 जन मृत 12 रु अधिक गुरुतर एवं चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता फाइनल रे चीन जोड़ी का सह मुकाबला करुछन्ते भारतीय जोड़ी सात्विक और चिराग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछन्ति जदि भारतीय माने विश्वर श्रेष्ठ कंपनी गुडिकर दायित्व निर्वाह करिपरिबे भारतीय उद्योग गुडिक मध्य विश्वरे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिपरिबो। गतकाली नुआदिल्लीर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स रो शताब्दी समारोह रे जोगदेइ श्री मोदी भारतीय मानंकु विश्वरे अग्रणी नेतृत्व नेबा पई आह्वान देइछन्ति। एकविंश शताब्दीर युवपीढ़ी को प्रजुक्ति विद्या सम्मिलित विभिन्न क्षेत्र रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करी यूनिकॉर्न निर्माण ड्रोन प्रजुक्ति विद्यार विकास एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता संपन्न समाधान दिगरे अग्रसर हेबा लागि कहिछन्ति। श्री मोदी देशर युवपीढ़ी को बृहत स्वप्न देखिबा लागि आह्वान देबा अवसर रे विभिन्न विश्वस्तरीय उद्योग गुडिकर नेतृत्व नेबा क्षेत्र रे सेमानंकर भूमिकार आवश्यकता उपरे गुरुत्व देइछन्ति।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री कहिछन्ति विश्व अनिश्चितता मध्यरे भारतर जीडीपी 7.8% वृद्धि देशर आर्थिक दृढ़ता प्रदर्शन करुछि। श्री मोदी कहिछन्ति भारत नीतिगत सक्रियता जोगु दीर्घकालीन आर्थिक विकास दर बजाय रखिबारे सफल होइछि।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी।
0: प्रधानमंत्री कहिछन्ति देशरे गत अप्रैल रु जून मास मध्यरे विद्युत उत्पादन 9% वृद्धि पाइछि। सेहि समय मध्यरे जानवाहन बिक्री परिमाण 20% वृद्धि पाइथिबा बेले तीन चकिया जान बिक्री 30% वृद्धि घटिछि। नेपाल बन्यारे मृत्यु संख्या 1344 को वृद्धि पाइछि। एथिरे 590 जन विदेशी नागरिकों समेत 5000 लोक निखोज थिबा सूचना मिलिछि। ए पर्यंत नेपाल समेत विभिन्न देशर उद्धारकारी दलगुडिक 13100 रु अधिक लोकों उद्धार करिछन्ति। नुआकोट जिल्लारे जने 60 वर्षीय महिलांकु 10 दिन परे कादुअ मध्यरु जीवित उद्धार करायछि। तेबे मृतकमानंकु चिन्हट करिबा क्षेत्ररे असुविधा सृष्टि होउछि। पुलिस पक्षरु 222 जन महिला, 355 जन पुरुष एवं 453 जन अज्ञात मृतदेह गुडिक चिन्हट करिबा लागि आवश्यक तथ्य संग्रह कराजैछि। इतिमध्यरे नेपाल पुलिस पक्षरु 1270 अज्ञात मृतदेह विषयरे सविशेष तथ्य वेबसाइटरे प्रकाश कराजैछि। उद्धार कार्यकु त्वरान्वित करिबा लागि 7912 जन पुलिस अधिकारीङ्कु नियोजित कराजैछि। औषध नियामक आईन प्रवर्तनकारी संस्थागुडिक देशरे बेनियम भाबे प्रस्तुत ओ जोगाण हेउथिबा औषध विरोधरे सम्मिलित पदक्षेप नेबा आरंभ करिछन्ति। नुआदिल्लीरे क्राइम ब्रांच पक्षरु एभळी कार्यरे लिप्त थिबा संस्थागुडिक उपरे पदक्षेप नेबा आरंभ कराजैछि। केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संस्था, दिल्ली पुलिस एवं अन्यान्य संस्थागुडिक सहित बेनियम भाबे विभिन्न ब्रांडर नकली औषध निर्माणकारी और जोगाण करुथिबा संस्था उपरे चढ़ाव करुछन्ति। गतमास 27 तारिखरे भारतीय औषध नियंत्रक महानिर्देशालय पक्षरु सबु राज्यर औषध नियंत्रण संस्थागुडिकु ए दिगरे पदक्षेप नेबा पई अवगत कराजैछि। आपण माने संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणीरु। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ କରି 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले

0: में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जीटिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल

0: ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
2: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर

0: आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
1: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष फरहतनाज।
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
2: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपणमाने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रचारित होउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे। आमार परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारिबे एहि विज्ञापन परे।
4: बन्या हेउ बा महाबात्या, सबु परिस्थिति रे
5: गारु सहर जाए, सबु स्थान रे
4: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई,
5: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए, सबुरी भाषा रे
4: केवल आकाशवाणी।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ନିଖିଲ କୁମାର। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि

0: देश की क्षमता को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब बड़े पैमाने पर आयात करने वाले देश से प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। श्री शाह ने आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल सऊदी अरब की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा पर रियाद पहुंचे। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में सऊदी अरब के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री डॉक्टर तारिक अल हमद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंगलवार तक चलने वाली अपनी यात्रा के दौरान श्री सिंह मानव संसाधन, कौशल विकास, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकारी अनुसंधान संस्थानों, उद्योग और स्टार्टअप्स के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नवाचार को गति देने और यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग आवश्यक है कि वैज्ञानिक अनुसंधान बाजार तक पहुंचे और लोगों को इसका लाभ मिले। कोलकाता में आज 2 दिवसीय राइस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सहित कई रणनीतिक वैज्ञानिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के लिए खोल दिया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। ये मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ की स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए चित्रकूट जिले में मौजूद हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान जारी है। वहीं बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तेज वर्षा का अनुमान जताया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक वर्षा की आशंका है। वहीं दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी वर्षा जारी है। नई दिल्ली के मोती बाग इलाके में एक इमारत के गिरने की खबर है। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। Prime Minister Narendra Modi has called upon Indians to dream big and lead from the front, saying that if Indian talent can lead the world's top companies, Indian enterprises can also lead the world. Mr. Modi made these remarks while addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi. Encouraging the ambitious spirit of the 21st century youth, the Prime Minister celebrated their drive to build unicorns, innovate in drone technology and create cutting-edge AI solutions.
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड ना करें।
1: The Prime Minister also highlighted that the world now praises India's policy dynamism and its status as the fastest growing major economy. He asserted that achieving a 7.8% quarterly growth amid the West Asia war and global

0: 32-kilometer event. Sonmayeshu Bashyak, your fifth position in her age category in both the 77-kilometer and 42-kilometer events, while Binita Kami secured first position in her age category in the 42-kilometer event. Shobha Rai secured third position in her age category in the 21-kilometer Surya Spiti Challenge.
1: Maitika Mangar, Sikkim se. Sikkim se Spiti tak ka mera safar mere liye sirf ek marathon mein hissa lene ka yatra nahi thi, balki khud ko chunauti dene aur apni simao ko pehchanne ka anubhav tha. To Sikkim ke pahadon se nikalkar Spiti ghati ke kathin aur unchai वाले रास्तों तक पहुंचना अपने आप में रोमांचक था। तो 77 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन पूरी करना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैं जब गाजा पहुंच गई थी स्कीम से तो उस समय मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, मतलब बिगड़ गया था पूरी तरह से। तो एक दो दिन तो मैं पूरी तरह से बीमारी पड़ी रही और 77 का रन था जिस दिन, तो उस दिन से एक दिन पहले मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट की थी कि मैं कल करूं या न करूं, रन करूं या न करूं। तो उन्होंने देखकर फिर कुछ क्वेश्चन किया, तो उसके बाद कर सकते हो बोला, तो मैंने 77 किया। तो ये 77 किलोमीटर के अल्ट्रा मैराथन पूरी करना मेरे लिए आसान नहीं था, कई बार शरीर थक गया और मन ने रुकने को कहा, लेकिन मैं खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ती रही। रास्ते की खूबसूरत हरियाली वादियों ने मेरा उत्साह बनाए रखा। तो फिर 30 तारीख को फिर जो था 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन था, 21 किलोमीटर जो सुमदो में हुआ था। तो उसमें 21 किलोमीटर की दौड़ में अपने आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल करना मेरे लिए बेहद गर्व और खुशी का पल था। सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि वो रास्ता बहुत ऊपर की तरफ था ना, जो ऊंचाई की तरफ था, 10 किलोमीटर ऊंचाई की तरफ ही दौड़ना था, उसके बाद ही नीचे फिर आना था। तो इस बात की सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं स्पीति में है सिक्किम का प्रतिनिधित्व कर सकी। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से हम अपने सोच से कहीं आगे जा सकते हैं। ये 77 किलोमीटर जो अल्ट्रा मैराथन हुआ था उसे काजा जो कुंजुमला वैली में हुई थी, जहाँ पे जो हाईएस्ट ब्रिज अल्टीट्यूड ब्रिज जो था वो होके गए थे, जो कि मोनास्ट्री के नीचे नीचे करके वो रूट ऐसा था। तो काफी अच्छा अनुभव रहा, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ।
0: सिमिलरली गंगा हंगसुब्बा आल्सो सेक्योर सेकंड रनर अप इन द ओपन 77 किलोमीटर category and first position in his age category in the 42-kilometer event, with Moinak Chatterjee, D. Ramdulal, Akashvani News Gangtok for Northeast Diary.
2: From laying the foundation for modern education to envisioning planned urban development and stronger connectivity, Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur played a transformative role in shaping Tripura's future. Revered as the architect of modern Tripura, his visionary leadership continues to inspire generations. Our Agartala correspondent Suman Bhattacharji brings us a report on his enduring legacy.
3: There are few leaders in Tripura's history whose vision continues to shape the state's progress even today. Among them, Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur stands out as the true architect of modern Tripura. Born on August 19, 1908, Maharaja Bir Bikram ascended the throne at a young age. Despite his short reign, he introduced several visionary reforms that laid the foundation for Tripura's modern development. Pradyot Kishore Deborman, a member of the royal family of Tripura, said that due to the efforts of the late Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur and the late Maharani Kanchan Prabha Devi, Tripura got the opportunity to become part of the Indian Union. As a result, today we have the honor of identifying ourselves as citizens of India.
4: वो सिर्फ महाराजा नहीं थे सिर्फ जनजाति के लिए या बंगालीज के लिए या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस के लिए, वो एक देश प्रेमी थे। आज हम लोग हिंदुस्तान में हैं क्योंकि कंचन प्रभा देवी जानते थे कि महाराजा का

0: सपना है कि हम एक हिंदुस्तान में रहे, ना कि पाकिस्तान में। और उस सपने को पूरा महाराजा तो जिंदा नहीं रहे थे, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर राजमाता कंचन प्रभा देवी, जब महाराजा का देहांत हुआ, कंचन प्रभा देवी वॉज ओनली 35 ईयर्स ओल्ड। उस समय उनके ऊपर कितना दबाव था, कितना प्रेशर था, तभी भी 3 बच्चे उनके पास, मेरा पिताजी सिर्फ 14 साल, तभी भी उनका एक डिसीजन आज हमें हिंदुस्तानी बोलने का अवसर देता है।
1: Under his leadership, Maharaja Bir Bikram College was established, which remains one of the state's premier institutions of higher education. He also promoted the expansion of schools and encouraged modern education across Tripura. His vision extended beyond education. Maharaja Bir Bikram introduced administrative reform, promoted planned urban development, improved road connectivity, and strengthened public infrastructure. His efforts transformed Agartala into a well-planned town and laid the groundwork for efficient governance. One of his most remarkable contributions was providing land for the airport of Agartala. Today, the Maharaja Bir Bikram Airport stands as a lasting symbol of his foresight and commitment to improving connectivity between Tripura and the rest of the country. Another royal family member, Rajkumari Pragya Deb Barman, also remembered his role as the architect of modern Tripura.
2: उन्होंने जो भी कुछ किया, अभी हम लोग पूरा अपना त्रिपुरा में हम देख सकते हैं, जो भी आपका educational institutes है, MBB college हो या आपके धर्मनगर में college है, उसको छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाना, डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना त्रिपुरा में, वोटिंग राइट्स, उसको छोड़ के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाना, अगरतला टाउन प्लानिंग, और सबसे जो बड़ा उनका जो विजन था वो था आपका लैंड रिजर्वेशन, जो आज का जो TTADC है, इट इज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ जो महाराजा ने इन्विजन किया था, ताकि हमारे लोगों को बचाकर अपना लैंड राइट्स दे सके। तो ये सबका जो भी महाराज ने हमारे सबके लिए किया, धर्म जाति ये सब नहीं देखा महाराजा ने कभी भी। और आजकल के जमाने में लोग वोट्स लेने के लिए, पावर में आने के लिए, ये सब छोटे छोटे चीजों को लेकर हमारे कम्युनिटी में, हमारे लोगों के बीच में बहुत कुछ पैदा किए हैं। महाराजा के अंदर में जितना प्यार था अपने लोगों के लिए, ये हमको दोबारा कल्टीवेट करना चाहिए।
1: इवन बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस, महाराजा बीर विक्रम एनविजन्ड अ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव त्रिपुरा एज फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच वर वेल अहेड ऑफ दैट टाइम। फ्रॉम एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू अर्बन प्लानिंग एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर लिफ्ट एन एंड्यूरिंग लीगेसी। हिज विजन कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशंस, सिक्योरिंग हिज प्लेस इन हिस्ट्री एज the architect of modern Tripura. For Northeast Diary, Shuman Bhattacharji, Akashvani, Agartala.
3: Mizoram is stepping up efforts to establish itself as the winter capital of India, with the state government positioning the winter festival as a platform to showcase the state's unique winter experience, culture, tourism and entrepreneurial potential.
4: Capital of India. The organizing committee for the festival met here at Aizawl under the chairmanship of the Chief Minister Lal Duoma to discuss preparations for the event. Lal Duoma said that they are actively working to establish Mizoram as the winter capital of India, and the festival would serve as a platform to showcase and promote entrepreneurship in the state. He also said the festival is being spearheaded by the tourism department. Its success would require coordination among various government departments. He also directed departments to identify and take responsibility for activities that could be undertaken within their respective areas. Several events have been planned as part of the winter festival, including an angling event by the fisheries department, a bamboo innovation exhibition by the commerce and industries department, and a photography exhibition by the information and public relations department, according to officials. The festival will also feature Christmas tree decorations, a Christmas parade, and several other programs. Mizoram recorded a tourist footfall of over 5.37 lakh during the period spanning between January and June this year. Officials said that the arrival of tourists has significantly increased in the state after the opening of the Bairabi Sairang railway line, which linked the state capital Aizawl with the rest of the country through a rail network in September last year. For Notice Diary, this is Isaac from Akashvani News, Aizawl.

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
2: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1,19,00,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। इनकी कीमत करीब 1,89,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्य निकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलंकर प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8 प्रतिशत

0: बचत की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वे बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स में फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। A major rescue operation is underway after a multi-story building housing a student paying guest PG accommodation collapsed in Satya Niketan area of Delhi this afternoon, according to the All India Institute of Medical Sciences Center for Treatment. Of them, one person was brought dead, 2 persons are in critical condition and 1 was discharged. Meanwhile, the Delhi police has said that 6 persons have been rescued so far and shifted to hospitals. Several people are feared trapped. The police said during the local inquiry, it was revealed that the building was 40 to 50 years old and some repair work was underway in the basement of the building when the incident happened. The Delhi Fire Service has deployed 18 fire tenders for the relief and rescue work at the location. The area where the incident occurred is close to the heart of Delhi University's South Campus and has several buildings, mostly housing student PGs, hostels and eateries. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has directed all concerned agencies to work in coordination to ensure swift rescue efforts on the ground. Delhi Chief Minister Rekha Gupta in a social media post said an adjacent building has also been vacated as a precautionary measure and every possible effort is being made to safely rescue those trapped and provide immediate assistance to the affected families. Union Home Minister Amit Shah has said that a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said the government has prepared a 3-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah also highlighted the government's development efforts in Jammu and Kashmir. He said the Union Territory is now on the path of progress and development, while Naxalism is becoming a thing of the past under the Narendra Modi-led government. Meanwhile, the Union Home Minister has cut short his visit and left for Delhi following the collapse of a multi-story building in the national capital. Mr. Shah, who reached Panaji last night on a 3-day visit to Goa, his scheduled program to inaugurate newly constructed BJP state office building in Goa this evening was cancelled in the wake of the Delhi mishap. Vice President C.P. Radhakrishnan today urged students to stay away from drugs and restrict social media usage. The Vice President was addressing the Golden Jubilee celebrations of Gitanagar College at Guwahati in Assam today.

0: Thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
1: Preparations are underway in New Delhi for the upcoming BRICS Summit 2026 to be held at Bharat Mandapam on the 12th and 13th of this month. The 18th BRICS Summit will bring together leaders of BRICS members and partner countries, outreach countries and heads of international organizations. The External Affairs Ministry responded to the UN General Assembly resolution on Equal Area World Map. Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that India has voted in favour of the United Nations General Assembly resolution on equal area cartographic representation. Mr. Jaiswal further added that India's sovereign territory, including the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, must be depicted in accordance with India's official map. The Ministry of Coal has rejected the media reports attributing reduced power generation at Punjab's thermal plants to inadequate coal supply from the centre. The ministry clarified that adequate coal has been made available to Punjab's power plants. In badminton, Indian pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched the men's doubles title at the China Masters in Shenzhen today. The Indian duo defeated China's He Ji-Thing and Reng Chiang-Tu in the summit clash to secure country's first ever title at the tournament. The victory marks the duo's 10th career title on the BWF World Tour. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी भवानी पटना शुणु कार्यक्रम सूचना प्रथम शुणु चलित अधिवेशन रे प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क में संध्या 6:30 मिनिट्रे आदिवासी गीत क्रम शुणे जय सिंह माझी और साथी परेषण करटिया कंद गीत राति 7:25 मिनिट्रे जिला हलचल क्रम शुणे कोरापुट जिला संपर्क में रिले कर शुणु आकाशवाणी कटक केन्द्र चाषी भाई भाई कार्यक्रम चाषवास प्रचार करूँ राति 7:30 मिनिट्रे राति 8:00 आपण चिठीपत्र उत्तर को नहीं कार्यक्रम चिठी पाई हिंदी भक्ति गीत प्रचार करूँ 8:15 मिनिट्रे कार्यक्रम शिल्पी हेले हरिओम सरन राति 8:30 मिनिट्रे स्पोर्ट्स कैन 9:15 मिनिट्रे स्पॉटलाइट राति 9:30 मिनिट्रे शुणे अखिल भारतीय हिंदी रूपक एवं राति 10:00 शुणे रविवासरीय संगीत सभा ए समस्त कार्यक्रम रिले कर प्रचार करूँ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र चलित अधिवेशन में प्रचार हो कार्यक्रम संपर्कित सूचना एथर शुणु आसंता काल विभिन्न अधिवेशन रे प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क में आगामी प्रथम अधिवेशन रे सका 6:10 मिनिट्रे प्रचार करू भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना शिल्पी मैंने धनंजय शतपथी सुचित्रा महापात्र उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी अनिमा कर शशांक महापात्र शुभश्री साहू चेतना चिंतन प्रचार करू सका 6:30 मिनिट्रे सकाळ 6:35 मिनिट्रे श्रीमद भागवत कार्यक्रम स्वच्छ जीवन प्रचार करू सका 7:25 मिनिट्रे सका 7:30 मिनिट्रे शुणे श्रीरामचरित मानस चाषर कथापी समय रही सका 7:40 मिनिट सका 7:45 मिनिट्रे पुरतन क्रम प्रचार करू ओडिसी शिल्पी हेले सस्मिता शुभश्री भंज गीत गीतांजलि प्रचार करू सका 8:30 मिनिट्रे शिल्पी मानले श्रीकांत दास और नमिता अग्रवाल सकाळ 8:45 मिनिट्रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकृत महाकाव्य वैदेश विलास हिंदी कथाचित्र गीत प्रचार करू सकाळ 9:00 9:30 मिनिट्रे शुणे ओडिया कथाचित्र गीत पर कार्यक्रम खोला झरका शुणिपारे पूर्वाह 10:10 मिनिट्रे द्वितीय अधिवेशन में हिंदी कथाचित्र गीत प्रचार करू दिन 12:00 दिन 12:30 मिनिट्रे सुगम संगीत शिल्पी मानले टी निवेदिता भारतरत्न पूनम महांति वेणुधर सुबुद्धि मीता परिजा जितेन्द्र नाथ पट्टनायक चाषर कथा शुणिपारे दिन गोटाए बाजी 10 मिनिट्रे दिन गोटाए बाजी 20 मिनिट्रे प्रचार करू महिला कार्यक्रम शक्ति रूपा हिंदी कथाचित्र गीत प्रचार करू दिन 2:45 मिनिट्रे तृतीय अधिवेशन में अपराह 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग जुअणी शुणे साहित्यान अपराह 5:30 मिनिट्रे संध्या 6:30 मिनिट्रे समन्वित कार्यक्रम युवा शक्ति 7:25 मिनिट्रे जिला हलचल क्रम मलकानगिरी जिला संपर्क এই কার্যক্রম দ্বয়ের ইলেকট্রিক

0: One, two, three, four.
1: सुनो, चानियो। अरे, चानियो मो।
2: देलो।
1: कौन है मिति गानी पकाऊ चाजे?
2: अरे खबर कागजरो चारी प्रस्ता उल्टे लेनी, स्थानीय खबर कोट्टे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इत्ती कहीं की? आमो रेडियो टा ऑन कलनी? मीडियम वेवरे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आम आकाशवाणी भवानी पटना ट्यून कर प्रत्येक दिन सकाळ 10टा बजे 10 मिनिट रु 11टा बजे 10 मिनिट जाए स्थानीय खबर आ मनपसंदर गीत कोनी कार्यक्रम खोला।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: हेलो
3: हेलो
2: किए
4: आपणक सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूति रा कथा
2: आमा सह कथा हुंतु फोन माध्यम रे प्रत्येक गुरुवार दिन 11:30 पर्यंत
4: आमो फोन नंबर हैला
5: 0667029562329568।
2: मने रखंतु 0667029562329568 एवं एहार प्रसारण सुनंतु प्रत्येक रविवार दिन 9:00-10:00 पर्यंत।
6: हेलो
3: हेलो
6: किए
4: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। आगामि त्रिवर्षेषु 100 अन्ताराष्ट्रिय तथा अन्ताराज्यीय मादकसञ्जालानि खण्डयितुं केन्द्रीयगृहमन्त्रिणा अमितशाहेन निर्धारितं लक्ष्यम्। भारतस्य आर्थिकशक्तिः नीतिगतिशीलता च देशं विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। भारतीयप्रतिष्ठानानि जागतिकस्तरे नेतृत्वं कुर्युः इति प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः ओजस्वयुतम् आह्वानम्। संयुक्तराष्ट्रसंसदि समानक्षेत्रफलमानचित्रप्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। संप्रभुता प्रादेशिक अखण्डतयोः अक्षुण्णतां रेखाङ्कयत् भारतेन प्रोक्तं यत् जम्मूकश्मीरलद्दाख समेत्य समस्तक्षेत्रस्य प्रदर्शनं केवलम् आधिकारिकमानचित्रानुगुणम् एव स्वीकार्यम्। मध्यप्रदेशस्य सागरमण्डले सन्दिग्धविषाक्तमद्यपानेन 10 जनाः मृत्युमुपगताः, 35 जनाः चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, कतिपयसन्दिग्धाः आरक्षिदलेन गृहीताः। अपि च चीनदेशस्य शेन्झेन् नगरे आयोजितायां बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां चाइना मास्टर्स पुरुष युगल प्रतियोगितायाः चषकं भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी युगलेन विजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवा राज्ये वार्ताहर सम्मेलने ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं कर्तुं रूपरेखां प्राकटयत्। तेन मादकपदार्थविरोधी त्रिवार्षिक राष्ट्रिय अभियानस्य आह्वानं कृतम्। गृहमन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनेन 100 मादकसञ्जालानि खण्डयितुं, 100 अपराधिनः भारतम् आनेतुं तथा 100 अवैधिकप्रयोगशालाः विनष्टं कर्तुम् उच्चलक्ष्यं विनिर्धारितम्। नवदेहल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स महाविद्यालयस्य 100 वर्षे सम्पूर्णे सति आयोजिते शताब्दी समारोहे प्रधानमन्त्री मोदी मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन जेन्जी युवा उद्यमिनः प्रोत्साहयितुम् उच्चलक्ष्यधारणस्य मन्त्रो दत्तः। तेन प्रोदीरितं यत् भारतीय मेधा जागतिक व्यापार जगत् नूतनां दिशं दर्शयति। AI प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन च देशः आर्थिक समृद्धिं प्राप्नोति।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: आर्थिक दृढ़तां प्रतिपादयन प्रधानमंत्री अवोचत यत् पश्चिम एशिया संकटावधौ अपि भारतेन 7.8% यावत् अभूतपूर्व

0: संवृद्धि मानमर्जितम्। अनेन भारतस्य आन्तरिकशक्तेः परिचयः लभ्यते। तेन प्रख्यापितं यत् वैश्विकसङ्कटेषु भारतस्य दृढनीतिसञ्चालनमद्य जागतिकस्तरे श्लाघनीयं वर्तते।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: आत्मनिर्भर भारतस्य दिशि मेक इन इंडिया अभियानम अभूतपूर्वम परिवर्तनम साधयतीति प्रधानमंत्री अवोचत। अनेन अभियानेन भारतमद्य प्रमुख निर्यातक राष्ट्रम अभवत्। असौ न्यगादीत् यत् स्मार्टफोन क्षेत्रे ₹2,50,000,00,000 निर्यातं सम्प्राप्तम्। रक्षा उत्पादने च ₹2,00,00,000 नूतन कीर्तिमानं स्थापितम्। भारतस्य भौगोलिक अखण्डतां संप्रभुतां रेखांकयन् विदेश मन्त्रालयः संयुक्त राष्ट्रस्य मानचित्र प्रस्तावे स्वपक्षम् उपस्थापितवान्। मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन प्रोक्तं यत् भारतेन यूएन प्रस्तावस्य समर्थनं कुर्वता स्पष्टं कृतं यत् भारतस्य राष्ट्रीय सीमासु किमपि भ्रामकं प्रदर्शनम् असह्यमस्ति। तेन प्रोक्तं यत् अयं प्रस्तावः कस्यापि देशस्य सीमायाः अनुमोदनं नैव करोति, अपि तु केवलं समानक्षेत्रफलप्रदर्शनस्य नीतिं पोषयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवदेहल्याम् अद्य महती दुर्घटना अभवत् यत्र सत्यनिकेतनक्षेत्रे एकं पञ्चस्तरीयं भवनं ध्वस्तम् अभवत्। सूचनां प्राप्य देहली अग्निशमनदलेन 18 वाहनानि प्रेष्य आपदुद्धारकार्यम् आरब्धम्। ततः एव 4 जनाः उद्धृत्य चिकित्सालयं प्रति नीताः, तेषु एकः मृत्युमुपगतः, अन्ये च गभीरावस्थायां सन्ति। उपराज्यपालः तरंजीत सिंह संधु, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता च पीडितानां सहाय्याय त्वरित निर्देशान् अयच्छताम्। सहैव सुरक्षादृष्ट्या पार्श्वस्थम् एकम् अपरं भवनमपि रिक्तं कारितम्। सागरमण्डले विषाक्त मद्यपानेन भीषण त्रासदी संजाता, यत्र 10 जनाः स्वप्राणान् अयच्छन्। 35 जनाः चिकित्सालयेषु नीताः, येषु केषाञ्चन अवस्था गभीरा वर्तते। गम्भीररुग्णाः बुन्देलखण्ड वैद्यकीय महाविद्यालयं तथा सागरमण्डल चिकित्सालयं प्रति स्थानान्तरिताः सन्ति। एषा घटना बन्दा आरक्षी स्थानक क्षेत्रस्य नौराजा तथा गुगरा खुर्द इत्यत्र अभवत्। समाहर्त्री अवोचत् यत् शवपरीक्षणस्य प्राथमिक निष्कर्षैः मिथेल एल्कोहल इति विषाक्त रसायनस्य सेवनस्य संभावना प्रतीयते। घटना संबंधे बन्दा थाना क्षेत्रात् केचन संदिग्धाः गृहीताः सन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं राष्ट्रराजधानी नवदेहली पूर्णसज्जतां भजते। सितंबर मासस्य 12-13 दिनांकयोः भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोज्यमानस्य अस्य बृहत् सम्मेलनस्य सुरक्षा समीक्षायै देहली आरक्षी दलेन अद्य वाहन व्यूह पूर्वाभ्यासः संचालितः। सम्मेलने विश्वनेतारः ब्रिक्स देशानां प्रमुखाश्च भागं ग्रहीष्यन्ति। आसाम प्रवासे सम्प्राप्तः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य गुवाहाट्यां गीतानगर महाविद्यालयस्य 50वें वार्षिकोत्सवे मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन छात्रान् सम्बोध्य गुणवत्तापूर्वकं शिक्षायै अनुसन्धानाय च बलं दत्तम्। उपराष्ट्रपतिना उच्चशिक्षायां महिलानां सहभागि

0: सुन्दरता नारीशक्तेः प्रतीकमिति अभिहितम्। बैडमिंटन क्रीडायाम् अद्य शेंजेन नगरे चाइना मास्टर्स स्पर्धायाः पुरुष युगल क्रीडायाम् सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी इत्येतयोः भारतीय युगलेन उपाधिः विजितः। चीन देशस्य ही जी टिंग तथा रेन जियांग यू इत्युभयोः युगलम् एकादश एकविंशतिः एकविंशति त्रयोदश एकविंशति सप्तदश अंकैः पराजित्य प्रथमवारं स्वर्णपदकं प्राप्तवन्तौ। पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः। ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। भारतस्य आर्थिकशक्तिः नीति गतिशीलता च देशं विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। संयुक्तराष्ट्रसंसदि समानक्षेत्रफलमानचित्रप्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। मध्यप्रदेशस्य सागरमण्डले संदिग्धविषाक्तमद्यपानेन जनाः मृत्युमुपगताः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भवानी पटना समय वर्तमान संध्या 6:30 प्रचार करुछु आदिवासी गीत क्रम रे कुटिया कंध गीत परिवेषण करछंती जय सिंह माझी एवं साथी सुनी परिबे ए सूचना परे।
2: समस्तक पई सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: ए पर्यंत यही योजना रे 9,50,00,000 रु अधिक लाभार्थी जोड़ी ही सारे। जदि आप 18-40 वर्ष बयसर होती तेज मासिक अटल पेंशन सहित तीनो ग्यारंटेड सुविधा विषय जानापी आपण बैंक शाखा सह जोगाजोग करूँ।

0: आकाशवाणी कटक
1: नमस्कार वर्तमान मुख्य संवाद सह मु लहरिका पटनायक। नूआदिल्ली में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को साक्षात कर राज्यर विकास और कल्याण सह जड़ित विभिन्न प्रसंगर आलोचना कले राज्यपाल डॉ हरिबाबू कम्मम पाटी। कटकठारे चलिथिबा भारतीय जनता पार्टी दुईदिनिया राज्य कार्यकारिणी बैठक उद्यापित सरकार दुई वर्षर विकासमूलक कार्य संपर्क में आलोचना कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विभिन्न स्थानर इंग्राजी बनानर व्यवहार सुनिश्चित करने को जिलापा राजस्व विभाग निर्देश। समस्त जिलापा ए संपर्क में पत्र मध्यम अवगत कराइले विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अरविंद पाढ़ी। पुरी श्रीमंदिर श्रीकृष्ण लीलार दशमी तिथि आज हो ठाकुर बणभोजी बेश कोलिविका बकासुर और अर्घासुर बध नीति अनुषित हो। मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणी आसंता बंद रहिबो। परवर्ती शुणी तारीख जनसाधारण को गणमाध्यम जरिया जणाई दिया साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्ष सूचना। परिवेश जंगल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पक्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार तालिका प्रकाश। राज्यर चारि सहर स्थानित स्वच्छ वायु दिवस पालन अवसर में आसंता नूआदिल्ली प्रदान पुरस्कार। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगितार फाइनल रे चीन जोड़ी हेजी तिंग और एन जियांग यू को परास्त करी भारतीय जोड़ी सात्विक और चिराग विजयी। एवं राज्यर विभिन्न स्थान में झड़बर्षा होगा नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर् अनुमान। आसंता 24 घंटा मध्य वज्रपात सह वर्षा नहीं 23 जिला को सतर्क सूचना जारी। मुख्य संवाद वर्तमान परवर्ती मुख्य संवाद शुणिपारे राति 8।
0: आकाशवाणी कटक प्रचार करुछु ओडिया कथाचित्रर गीत। प्रथमे कथाचित्र चका भूरी कंठदान करिसेंती महम्मद अजीज।

शिविर हेबा छुआमानकर सुस्थ विकास मानसिक आ शारीरिक अभिवृद्धि लागि पोषण थिबा खाद्यर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण छुआमाने भिन्न भिन्न प्रकार खाद्य खाइले सेमानकर सुस्थ विकासर संभावना सेते बरकस हेबा बोली विशेषज्ञ माने मत दैछन गर्भावस्था आ प्रसव उत्तरु मामानकर स्वास्थ्य पोषण आर जतन सुस्थ छुआर विकास लागि बहुत जरूरी है ममता PMMBY योजना मातृत्व ई गुरुत्वपूर्ण समयाती साहजा सचेतन करबार दिगे उल्लेखनीय पदक्षेप नेउछि पर्याप्त पोषण आर शैशवर प्रारंभिक जतन छुआर मस्तिष्क विकास शिक्षा आर विद्यालय लागि प्रस्तुतिर गोटे दृढ़ मूल दुआए कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा 2026 के सुरक्षित सुव्यवस्थित आ आकर्षणीय भाव आयोजन करवा लगे मुख्य शासन सचिव अनुगणकर अध्यक्षता उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हो इति श्रीमती गर्ग ओडिशार नौ वाणिज्य ऐतिह्य के विश्वस्तरती पहुँचाबार लगे अत्का चेष्टा उपरे जोर देते श्रृंखला सुरक्षा और परिवेश के नजरती रखिकी ए बछर बालीजात्रा के पूरा प्लास्टिक मुक्त सबुज बालीजात्रा भाव पालन करवाके निष्पत्ति होती सांस्कृतिक कार्यक्रम लगे दुईटा मंच तैयार करा आंचलिक व्यवसायी आउ कारीगर मान को प्रोत्साहित करवा लगे ओरमास तरफ 500 स्टल लगाजा उठा दुकानी मान लगे भिन्न भिन्न जगान खास भेंडिंग जोन आउ हस्तंत आर हस्तशिल्प स्टल खुलवा लगे निष्पत्ति नियाजी एबार नवेम्बर मस 24 तारीख नु मूल हेबार के ई बालीजात्रा डिसेम्बर मस 1 तारीख तक चलवा इथर इंडोनेशिया अंशीदार देश भाव भाग नेबार कार्यक्रम रही भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मिलनी कक्षण शिशु न्याय कमिटी ओडिशा हाइकोर्ट महिला और शिशु विकास विभाग आउ राज्य सरकार मिलित सहयोगी राज्यस्तरीय अंशीदार सम्मिलनी सम्मिलनी शिशु न्याय आईन 2015 दशंधीर कार्यकारिता आउ आयबा पंथा बाब्दे आलोचना करा जाइछि पूरी श्रीमंदिर जन्माष्टमी ठानु मूल होइतबार श्रीकृष्ण लीलार आज दशमी तिथि महापुरुकर बणभोजी बेश आउ किछि समय उतरु हेबा गोपलीला समयाती कृष्ण आउ बलराम गाई बाछरी मानकु सांगे नेकरी बणभोजी लागि जाइतबार कथा पुराणथि वर्णित रहिछि ए परम्परा के सुर करिकरी भुदमासर अंधार पखर दशमी तिथि महापुरुकु ए बेश करा जायसि पाणिपाक राजे आबा 7 दिन तक कम नु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही है आबा 24 घंटा भितर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल सहित 23 जिला चड़क मारिकी वर्षा हेबा बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आकलन करताके नजरती रखिकी स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय तरफ ये सब जिला मान लगे येलो वार्निंग जारी कर राज्य भिन्न भिन्न जगार संशोधित इंग्राजी बनानर व्यवहार सुनिश्चित करवारके राजस्व विभाग तरफ जिलापाल मानको निर्देश वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और बीमा दस्तावेज रखवारके गाड़ी चालक मानको परामर्श देला परिवहन विभाग संबलपुर विश्वविद्यालय और GM विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव ती आयबा काल जोग देवी राज्यपाल और संबलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ देवगढ़ सहित 23 जिला आयबा 24 घंटा भितर हो पारे वर्षा पाणिपाग विभाग सूचना आजिर आंचलिक खबर इनु शेष होला जुहार।

प्रचार कलु हिंदी भक्ति गीतर कार्यक्रम शिल्पी थे हरिओम शरण आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी भवानीपाटन केन्द्र परवर्ती कार्यक्रम रिले कर प्रचार करुचु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र शुणिपारे किसी क्षण मध्यरे।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ही नया रंग, जिसमें खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग, साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक चिराग ने पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब, रोमांचक फाइनल में चीन की जोड़ी को हराया। श्री चरणी और प्रेमा रावत का बेहतरीन प्रदर्शन। भारत ने महिला क्रिकेट एशिया कप में पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। दलित ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन ईस्ट जोन की स्थिति मजबूत, ईशान किशन ने जड़ा नाबाद शतक। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव, एलिना रिबाकिना, नाओमी ओसाका, कोको गॉफ सहित अन्य खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 89वां संस्करण सूरत में आयोजित किया गया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से स्वस्थ रहने की अपील की। और जम्मू कश्मीर में हुआ 29वां सब जूनियर नेशनल सेपक टैक्रो चैंपियनशिप का आगाज। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां भारतीय जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चाइना मास्टर्स में खिताब अपने नाम किया है। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने BWF सुपर 750 चाइना मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में सात्विक चिराग ने चीन के हे जी तिंग और रेन शियांग यू की जोड़ी को 11-21, 21-13, 21-17 से हराया। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक रिपोर्ट।
1: फाइनल में जीतिंग और रेन शियांग ने शानदार शुरुआत करते हुए 5-0 की बढ़त बना ली और भारतीय जोड़ी पर दबाव बनाए रखा था। सात्विक और चिराग ने बेहतरीन वापसी की कोशिश की, लेकिन चीन के खिलाड़ी ब्रेक के समय 11-5 से आगे रहे और खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा और पहला गेम 18 मिनट में 21-11 से जीत लिया। दूसरे गेम में भी चीन के खिलाड़ियों ने 2-0 की शानदार बढ़त बना ली, लेकिन भारतीय जोड़ी ने वापसी करते हुए स्कोर 3-3 और 6-6 से बराबर कर दिया। इसके बाद सात्विक और चिराग ने खेल पर नियंत्रण बना लिया और ब्रेक के समय 11-7 से आगे रहे। कुछ जबरदस्त स्मैश की मदद से भारतीय जोड़ी ने अपनी बढ़त 17-11 तक पहुंचा दी। भारतीय जोड़ी ने चीन के खिलाड़ियों की वापसी की कोशिश को नाकाम करते हुए 21-13 से जीत हासिल की और मैच को निर्णायक गेम तक पहुँचा दिया। निर्णायक गेम में चीन के खिलाड़ी मजबूती से उतरे और 4-0 की बढ़त बना ली। भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त वापसी करते हुए स्कोर 7-7 से बराबर किया और ब्रेक के समय एक बढ़त बना ली। इसके बाद वे 9-8 से आगे हुए और आखिरी ब्रेक तक 11-9 की बढ़त बनाए रखी। सात्विक और चिराग ने संयम बनाए रखा और लगातार 4 पॉइंट जीतकर 21-17 से जीत हासिल की। इस तरह 70 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में उन्होंने खिताब अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस मुकाबले पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। आज तो बेहतरीन प्रदर्शन किया ही हमने देखा, पहला गेम 11-21 से पीछे होने के बाद बेहतरीन वापसी करते हुए भारतीय जोड़ी ने आज जीत दर्ज की, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में कैसा रहा उनका प्रदर्शन, स्पेशली प्लेऑफ मुकाबलों में?
2: प्रशांत, जब इंजरी के बाद सात्विक और चिराग वापसी कर रहे थे इस टूर्नामेंट के लिए, तो सभी की निगाहें उन पर जमी हुई थी और जब क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बनाई तो उनसे उम्मीदें जो है और बढ़ गईं। क्वार्टर फाइनल से सात्विक और चिराग की इस जोड़ी ने एक पैटर्न अपनाया कि पहला गेम जीतकर, दूसरा गेम हारकर और तीसरे गेम में शानदार वापसी करके जो है अगले दौर में उन्होंने जगह बनाई थी। अगर क्वार्टर फाइनल की बात करें तो पहला गेम उन्होंने 21-13, दूसरा गेम 16-21 से उन्होंने हार है और तीसरे गेम में उन्होंने 21-18 से जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं सेमीफाइनल की अगर बात करें तो सेमीफाइनल में 21-16 से पहला सेट जीता, दूसरे में 18-21 से हार का सामना करना पड़ा और तीसरे में 21-11 से जीत कर फाइनल में जगह बनाई। लेकिन अगर फाइनल की बात करें तो ये पैटर्न उन्होंने आज थोड़ा सा उलट दिया, जहां पहले ही गेम में उनको 11-21 से हार का सामना करना पड़ा और दूसरे और तीसरे गेम में 21-13, 21-17 से जीत दर्ज करके इतिहास रचा।
0: जी, इतिहास रचा है। और विशेष जो ये जो जोड़ी है भारत की, सात्विक चिराग की, कोई भी टूर्नामेंट हो, जो भी बैडमिंटन प्रशंसक हैं उनकी

0: की निगाहें होती हैं, उनसे उम्मीदें होती हैं कि कोई भी टूर्नामेंट है वो जीत कर खिताब भारत को देंगे। तो आज जो जीत दर्ज की है इन खिलाड़ियों ने, क्या कुछ नया रिकॉर्ड अपने नाम बना किया है उन्होंने?
1: प्रशांत, सात्विक और चिराग जो है इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में फाइनल में पहुंचे थे लेकिन जीत नहीं पाए थे, और वहीं 2024 में इन्होंने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कोई चूक ना करते हुए ये जीत लिया है। और BWF वर्ल्ड टूर पर इस जोड़ी का यह 10वां खिताब है, यह इस साल का उनका दूसरा 750 खिताब और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। हालांकि ये लोग एशियन गेम्स के जो है मौजूदा पुरुष डबल चैंपियन हैं, और इस टूर्नामेंट में मतलब 2005 से शुरुआत के बाद से इसे जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। यह सात्विक और चिराग का 2026 में तीसरा BWF वर्ल्ड टूर फाइनल था। वे मई में थाईलैंड ओपन में उपविजेता रहे थे और उसी महीने में बाद में सिंगापुर ओपन उन्होंने जीत लिया था।
0: लगातार जीत दर्ज की है जोड़ी ने, और उम्मीद करेंगे आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भी ये लय बरकरार रखें। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। महिला एशिया क्रिकेट कप के 9वें मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में 7 विकेट से हराया। श्री चढ़नी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
2: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मुनीबा अली और शफाल जुल्फिकार ने पहले विकेट के लिए 27 रन जोड़े। मुनीबा ने 13 और जुल्फिकार ने 14 रन की पारी खेली। गुल फिरोजा को श्री चरणी ने खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया। सदाफ शमास को 3 रनों के स्कोर पर प्रेमा रावत ने क्लीन बोल्ड किया। कप्तान फातिमा सना भी खाता नहीं खोल सकी और दीप्ति शर्मा की गेंद पर विकेटों के सामने पाई गयी। पाकिस्तान की पूरी टीम 55 रन पर सिमट गई। मुकाबले में भारतीय स्पिन गेंदबाजों का प्रदर्शन लाजवाब रहा। श्री चरणी ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट चटकाए, वहीं प्रेमा रावत ने 9 रन देकर 3 विकेट चटके, जबकि दीप्ति शर्मा ने महज 5 रन देकर 2 विकेट और शिफाली वर्मा ने 1 विकेट चटकाया। 56 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने आसानी से 3 विकेट खोकर 9वें ओवर में ही हासिल कर लिया। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शिफाली वर्मा 12 रन और प्रतिका रावल 4 रन बनाकर पवेलियन लौटी। स्मृति मंधाना भी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और 9 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भारतीय पारी को संभालते हुए टीम को जीत दिलाई।
3: Came down the track and Harmanpreet Kaur, the captain of India, finishes off in style. That went the maximum. Captaining her country the 150th game was a brilliant way to finish off the game as India beat Pakistan by 7 wickets.
2: Harmanpreet ne nabad 18 run jabki Deepti 12 run banakar nabad rahi. Pakistan ki aur se Fatima Sana ne sarvadhik 3 wicket chatkaye. Is match ke dauran bhartiya khiladiyon ne kai record banaye to kai dhwast kiye. Vaishnavi Sports Scan.
0: कई रिकॉर्ड बने जैसा कि हमने रिपोर्ट में सुना और कई ध्वस्त भी हुए, और ये मुकाबला कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए भी बेहद अहम था। उन्होंने कल 150वां मुकाबला भारत के लिए खेला। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने।
4: I'm grateful. I never thought I'll come that far, but all the people behind me who's been supporting, I'm really grateful and hopefully keep getting the support because I think without support, I'm nothing. And I'm grateful. And the entire team, sports staff, they've been outstanding. So yeah, I mean, many more to come. Hopefully, keep continue the good work.
0: विशेष, जैसा कि हरमनप्रीत कौर ने अपना 150वां मुकाबला खेला, इसके अलावा किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा और क्या कुछ रिकॉर्ड उन्होंने बनाए?
1: प्रशांत, कल शेफाली वर्मा एक बार फिर से सुर्खियां बटोरती नजर आईं, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रनों का आंकड़ा छू लिया है और वे सबसे युवा महिला क्रिकेटर बन गई हैं। शेफाली ने यह कारनामा 22 साल 220 दिन की उम्र में किया। इसी का के साथ शेफाली ने आयरलैंड की गैबी लुइस, जिन्होंने 24 साल 347 दिन में यह कारनामा किया था, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही साथ शेफाली 3000 रन बनाने वाली 16वीं खिलाड़ी बनी है। इस लिस्ट में वह स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बाद भारत की तीसरी खिलाड़ी है। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो मुकाबले में निराशाजनक प्रदर्शन के साथ ही पाकिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। 55 रन पाकिस्तान का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक न्यूनतम स्कोर रहा है। इससे पहले साल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी टीम 56 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी।
0: बिल्कुल, भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा। उधर दिलीप ट्रॉफी का भी फाइनल मुकाबला जारी है। दिलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच MA चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज टॉस जीतकर ईस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। विशेष, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक कैसा रहा उनका प्रदर्शन?
1: प्रशांत, आज ईस्ट जोन ने जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 79 ओवर का आज खेल हुआ है, जहां 385 रन बनाए हैं और 4 विकेट खोए हैं। शुरुआत जो है ईस्ट जोन को

0: बहुत शानदार मिली थी, जहां 100 रन की पार्टनरशिप हुई वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन के बीच। अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 रन, वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 44 रन बनाए। उसके बाद शिखर मोहन 85 रन बनाए और ईशान किशन जो है उन्होंने शानदार शतक लगाकर, वो अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं कुमार कुशाग्र के साथ, जो 75 गेंदों पर 63 रन बनाकर डटे हुए।
1: विशेष कप्तानी हो, जैसा कि आपने बात की ईशान किशन की, विकेट कीपिंग हो, बल्लेबाजी हो, ईशान किशन का लगातार तीनों ही डिपार्टमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर भारतीय टीम तक का कैसा रहा उनका सफर?
0: प्रशांत, अगर ईशान की बात करें तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि 2026 में अपनी कप्तानी में झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताकर भारतीय टीम में उन्होंने वापसी करी थी। उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी शानदार प्रदर्शन किया, पाकिस्तान जैसे अहम मुकाबले में उन्होंने शानदार भूमिका निभाई और अब एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दलीप ट्रॉफी में इस जोन को लीड करते हुए फाइनल में पहुंचाया, साथ ही साथ बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया है।
1: मोहम्मद शमी के लिए भी ये मुकाबला बेहद अहम है, कैसे विशेष?
0: 2027 वर्ल्ड कप जो है आने वाला है और मोहम्मद शमी डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन जो है अपना बेहतर ही कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो 36 विकेट उन्होंने झटके थे, वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 16 विकेट और विजय हजारे ट्रॉफी के 7 मैचों में उन्होंने 15 विकेट झटके थे। तो इससे वह ये दर्शाना चाहते हैं कि अभी भी वो भारतीय टीम में वापसी के लिए तैयार हैं। हालांकि शमी ने 2025 में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था।
1: अब देखना दिलचस्प होगा कि दिन का दूसरा दिन किस टीम के लिए अच्छा साबित होता है। और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज अलेक्जेंडर ज्वेरेव, एलिना रिबाकिना, नाओमी ओसाका, कोको गॉफ सहित अन्य खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अलेक्जेंड्रो ताबिलो को 6-2, 7-6, 6-2 से हरा। वहीं महिला सिंगल्स में एलिना रिबाकिना ने यूलिया को 7-6, 6-3 से, वहीं नाओमी ओसाका ने एलिस मर्टेंस को 6-3, 3-6, 7-5 से हराया। उधर कोको गॉफ ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक तरफा मुकाबले को 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 89वां संस्करण आज गुजरात के सूरत में आयोजित किया गया। इस बार कार्यक्रम का थीम विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा था। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विकसित भारत के लिए युवाओं से स्वस्थ रहने की अपील की।
2: 89th संडे ऑन साइकिलिंग के एडिशन सूरत में आयोजित करी गई। देश के 25,000 से अधिक स्थानों पर आज युवाओं ने संडे ऑन साइकिलिंग करके नशा मुक्त युवा पर विकसित भारत का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए हम सब लोग साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने की कोशिश करें। आज के युवा अपने स्क्रीन के टाइम से थोड़ा सा समय अपने स्वयं के फिटनेस के लिए निकाले।
1: इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि साइकिलिंग सर्वश्रेष्ठ व्यायाम भी है।
2: साइकिलिंग करने से हम फिट रहते हैं। साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग ओबेसिटी के सामने लड़ने का सरल माध्यम है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है और साइकिलिंग फ्यूल की बचत भी करता है और अपने स्वयं को फिट भी रखता है। क्यों ना हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें।
1: और अब बात सेपक टैक्रो खेल की। 29वें सब जूनियर नेशनल सेपक टैक्रो चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से हो रहा है। इस चैंपियनशिप में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से ज्यादा खिलाड़ी और कोच शामिल हुए हैं। ये टूर्नामेंट 6 सितम्बर से 10 सितम्बर तक खेला जाएगा। और अब बात पैरा तीरंदाजी पर। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के महिला कंपाउंड वर्ग में शीतल देवी, लालपति, सरिता, पायल नग और पुरुष वर्ग में राकेश कुमार, तोमन कुमार, गुरविंदर सिंह और श्याम एस स्वामी ने क्वालिफिकेशन राउंड जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं रिकर्व पुरुष टीम वर्ग में भारत पहले स्थान पर है और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है। वहीं महिला टीम की बात की जाए तो वहां भी भारत पहले स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका के जैवलिन थ्रोअर रुमेश थरंगा पथिरंगे ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। रुमेश चैंपियन बनने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए हैं। उधर चीन के मोकी में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने आज जूनियर एशिया कप के पूल ए के अपने दूसरे मुकाबले में शानदार जुझारूपन दिखाते हुए जापान के खिलाफ 3-3 से ड्रॉ खेला। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी है।
2: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था।

0: इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
1: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन, और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
5: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी

0: सीएससी केंद्र पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
4: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर 4th खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर अप्पू सहारण का, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार।
1: आज की यात्रा किसी सड़क या ट्रेन की नहीं, यह यात्रा है समय की रेखा पर पीछे लौटने की। हमारी आज की आधुनिक दुनिया से मिलकर हम पहुंच रहे हैं लगभग 7000 वर्ष पीछे। हरियाणा के हांसी जिले की उस पावन धरा के गर्भ में दबा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक विशाल सुनियोजित महानगर। पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़क,

0: वैज्ञानिक जल निकासी, कुएं, दस्तकार, व्यापारी और कृषि पर आधारित एक समृद्ध समाज, यही पहचान है राखीगढ़ी की।
1: हजारों वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में छिपा इतना बड़ा महानगर आखिर सामने कैसे आया? क्या यह किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम था या निरंतर पुरातात्विक साधना का?
0: पुरातत्वविद व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे अमर सिंह ने कई वर्षों तक पढ़ाया है। वे समय समय पर छात्रों को राखीगढ़ी में हो रहे उत्खनन कार्यों को दिखाने के लिए ले जाते रहे। वे बताते हैं,
2: जहाँ तक राखीगढ़ी के प्रास्थल की खोज का प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार झज्जर गुरुकुल के संस्थापक व प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता आचार्य भगवान देव, जिन्हें स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1960 के दशक के प्रारंभ में राखीगढ़ी पुरास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनको यहाँ से कुछ प्राचीन बर्तन तथा वस्तुएं मिली, लेकिन वह इन वस्तुओं के ऐतिहासिक महत्व को स्वयं नहीं समझ पाए। उन्होंने ये अवशेष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सूरज भान को दिखाए। इसके पश्चात डॉक्टर सूरज भान ने 1963 में राखीगढ़ी का दौरा किया और वहां से प्राप्त अवशेषों की पहचान करके आधिकारिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि ये अवशेष भारत की प्राचीन सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। उन्होंने राखीगढ़ी के महत्व को समझकर आसपास के क्षेत्र का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य अनेक ऐसे ही पुरास्थल प्रकाश में आए। राखीगढ़ी की खोज ने सिंधु सभ्यता के बारे में प्रचलित इस धारणा को ही बदल दिया कि ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ही सीमित थी, बल्कि ये पुष्ट कर दिया कि वह भारत में सरस्वती नदी तथा इसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में भी ये फली फूली। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया है। अंततः 1997-98 के सत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ निरंतर 3 सत्रों तक उत्खनन किया। उत्खननों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के सांस्कृतिक अवशेष मिले। 2011 से 16 के बीच पुणे के डेक्कन कॉलेज के तत्कालीन कुलपति एवं प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में उत्खनन किए गए। टीला संख्या 7 से हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान भी मिला, जिसमें नर और मादा मानव कंकाल मिले। 2022-23 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने भी यहां पर उत्खनन कार्य किया। अभी भी 2025-26 के सत्र में यहां पर उत्खनन शाखा नोएडा 2 के मनोज सक्सेना के निर्देशन में कार्य जारी है।
1: सभ्यताएं हमेशा नदियों के आंचल में पनपती हैं। रावी के तट पर हड़प्पा का विस्तार हुआ और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो का। वहीं राखीगढ़ी का सीधा संबंध था सरस्वती दृषद्वती के सूखे मैदानी क्षेत्र से, जो कभी अत्यधिक उपजाऊ था। राखीगढ़ी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि इस पूरे नदी क्षेत्र का व्यापारिक और कृषि केंद्र था। यहाँ की समृद्ध खेती और जल प्रबंधन ही इस विशाल नगर के भरण पोषण का आधार था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि
0: दृष्टवती नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। ये नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, जिसमें सरस्वती उत्तर की ओर तथा दृष्टवती दक्षिण की ओर बहती थी।
3: ये एक घग्गर की तरह एक सहायक नदी थी दृष्टवती, जो आपके शिवालिक से निकल के और फिर आगे चल के ये करनाल और पानीपत के बीच से होते हुए और कई तीर्थ, महाभारत में बहुत तीर्थों का स्थान का धाम है, तो इस सफीदों यानी सप्त देवी और सर्व दमन के पास जाती थी, फिर पश्चिम को मुड़ जाती थी और इसके पास अश्विन वराह जींद और राम राय, ये पवित्र तीर्थ स्थान थे और राम राय में इसके 4 द्वार थे, उसमें राम राय था और राम राय के पास आपका राखीगढ़ी बसा हुआ है। और सरस्वती से मैंने एक संबंध बता दिया आपको, और इसकी जो धारा है वो आज भी आसन वराह जीन राम राय आप होते हुए हांसी हिसार सिसवाल मातर श्याम घाघरा रावस्तर सोथी होते हुए ये सरस्वती से संगम करती है सूरतगढ़ के पास, तो सरस्वती से इस पर संबंध है।
1: ऋग्वेद की ऋचाओं में इन नदियों किनारे भरतवंशी राजाओं द्वारा यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। रविंद्र सिंह बिष्ट मानते हैं कि सरस्वती के दक्षिण में

0: तथा दृशद्वती के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है।
1: नदी के किनारे है, अब वो लुप्त प्राय हो गई है, लेकिन एक जमाने में वो शिवालिक से लेके जहाँ तक सरस्वती संगम होता था, जिस सूरतगढ़ के पास एक प्राचीन स्थान है रंग महल के पास, इसका मेल होता था सरस्वती का। इसका इतना महत्व था, मैं आपको ऋग्वेद की बात बताता हूँ कि उसमें एक श्लोक आता है कि दृशद्वत्याम मानुष आप्याम सरस्वत्याम रेव दग्नि दिदीही। इसका मतलब है कि दशरथी आपया और सरस्वती इतनी पवित्र नदियाँ थी कि इसके किनारे भरत वंश के राजकुमार देव स्वस्थ और देव वाप इन तीनों नदियों के किनारे यज्ञ किए। हो सकता है एक स्थान उसका राखीगढ़ी रहा।
0: राखीगढ़ी लगभग 350 से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 9 टीलों का समूह है। यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल के साथ साथ पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य भी मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, नालियां और अग्निवेदियां यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ का समाज प्रशासनिक और नागरिक दृष्टि से अत्यंत परिपक्व था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी एवं वर्तमान उत्खननकर्ता मनोज सक्सेना ने बताया,
2: राखीगढ़ी ग्राम दो गांव राखी खास और राखी शाहपुर को मिलाकर बना है। राखीगढ़ी के आसपास 9 टीले हैं जिनका विस्तार लगभग 350 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे विशाल नगरीय केंद्र बनाता है। राखीगढ़ी ग्राम टीला संख्या 4 और 5 पर बसा है, तो यहाँ उत्खनन का कार्य संभव नहीं है, परंतु टीला संख्या 5 पर कुछ क्षेत्र में हमें कार्य करने की जगह मिली और जहाँ पर हम लोगों ने इस वर्ष के जो एक्सकेवेशन है उसमें हमने कुछ ट्रेंच वहाँ लगाए और हमें कुछ घरेलू संरचनाओं की कच्ची मिट्टी की ईंटों के से निर्मित हैं वो प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 1 से 9 तक के अध्ययन से हमें पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा काल के निरंतर सांस्कृतिक विकास और अधिवास के अनुक्रम को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ से उत्खनन में सुविकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सड़कों को समकोण पर काटना, जल निकासी की उचित व्यवस्था, पक्की ईंटों की नालियाँ, कच्ची मिट्टी की ईंटों या सन ड्राइड ब्रिक्स का उपयोग घरेलू संरचनाओं में मिला है और 4-2-1 के अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग मिला है। राखीगढ़ी की विशालता एवं विस्तार को देखते हुए इसे सिंधु सभ्यता की पूर्वी राजधानी माना जा सकता है। टीला संख्या 2 और 7 के उत्खनन में हमें सर्वाधिक आश्चर्य में डाला। टीला संख्या 2 से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों या सेमी प्रीशियस स्टोन्स के मनकों का प्रतिशत पूर्व के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक है।
3: राखीगढ़ी से कई हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। उत्खनन के दौरान अनेकों ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राप्त हुई जो इस सभ्यता के लोग अपने दिनचर्या में उपयोग करते थे। प्रोफेसर अमर सिंह बताते हैं,
4: तांबे और सोने के आभूषण, पकी मिट्टी और सेलखड़ी से निर्मित मोहरें तथा मनके बनाने के केंद्र मिले हैं जो इसके विकसित शहरी रूप को दर्शाते हैं। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण, चर्ट पत्थर से बनी ब्लेड्स, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के अनेक प्रकार के मनके, पकी मिट्टी से निर्मित मनके, चूड़ियां, पशु या मानव की मूर्तियां, खिलौना गाड़ियां आदि भी प्रमुख रूप से मिले।
3: राखीगढ़ी वासी मामूली वस्तुओं से लेकर लैपिस लाजुली पत्थर से बने श्रृंगार के कीमती आभूषणों का अक्सर प्रयोग किया करते थे।
2: यहाँ से हमें कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, जास्पर आदि के मनके, सोने के मनके, चर्ट के ब्लेड, टेराकोटा एवं शेल की बैंगल्स, अंजन सलाखा आदि के साथ साथ करीब करीब 2 मीटर मोटी दीवारों की घरेलू संरचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 7 जो कि दफन स्थल या बरियल माउंड है, से 7-8 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें एक मानव कंकाल के पास से 17 सोने के मनके, 2 सोने के फाइल और 42 मृदभांड मिले हैं जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक समाधि परंपरा और आर्थिक संपन्नता को दर्शाते हैं।
0: अब प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर

0: दूर क्षेत्रों में फैली अन्य सभ्यताओं के साथ मेलजोल होने के साथ साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे। राखी गढ़ी प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा होगा और यहाँ से भी दूर दूर तक व्यापार किया जाता होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विकास पवार मानते हैं कि राखी गढ़ी के अन्य सभ्यताओं के साथ पारस्परिक सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे होंगे।
1: पुरातात्विक उत्खननों से अनेकों प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों के मनके अवशेष रूप में मिले हैं, जिनका कच्चा माल राखी गढ़ी के आसपास नहीं मिला। ये कच्चा माल सुदूर हड़प्पा स्थलों तथा दूर विदेशी हड़प्पा पुरास्त्रों से निर्यात किया जाता था। उदाहरण के रूप में शंख गुजरात से, तांबा राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खानों से, राखी गढ़ी के उत्खननों में जो मानकीकृत बात बटकरे एवं मोहरे मिली हैं, उससे यह साबित होता है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के नियम एक समान थे। विदेशी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध के फलस्वरूप राखी गढ़ी का व्यापार क्षेत्र अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ओमान और फारस की खाड़ी तक भी था। वहाँ से कच्चे माल के रूप में अर्धकीमती पत्थर अवशेष रूप में मिलते हैं। इस प्रकार राखी गढ़ी पुरास्थल का व्यापारिक मेलजोल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों तक था।
2: अब सवाल उठता है कि इस कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग कौन थे? ये लोग कहीं से आए होंगे या फिर यहीं के गांवों व नगरों के मूल निवासी रहे होंगे। राखी गढ़ी के टीला नंबर 7 से प्राचीन कंकाल मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनका विस्तृत डीएनए अध्ययन व विश्लेषण किया है। एक महिला के प्राचीन कंकाल से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए अध्ययन में U2B2 माइटोकॉन्ड्रिया हैप्लोग्रुप मिला है। डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे का मानना है,
3: राखी गढ़ी में जो हड़प्पन कंकाल मिले हैं उनकी डेट लगभग 4,500 साल पुरानी है, तो उन लोगों का डीएनए सबसे प्रथम भारत में निकाला गया है। और इसके पहले हमको हड़प्पन लोग कौन थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसमें मतभेद थे, कुछ लोग बोलते थे कि हड़प्पन लोग यहाँ के थे, कुछ लोग बोलते थे कि वो बाहर से मेसोपोटामिया से आए होंगे, उन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया होगा ऐसा मानते थे। लेकिन इस डीएनए से कि जिसका रिजल्ट हमने एक दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है सेल, उसमें हम उसके रिजल्ट हमने पब्लिश किया है। और इसको एक दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स, उसने इसको अप्रूव किया है। और उन्होंने बोला कि 2019 में जो 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस हुए थे दुनिया में उसमें राखी गढ़ी का जिक्र उन्होंने किया है। इसका मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि हड़प्पन लोगों का जो जीन्स थे, जो डीएनए था, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट था, जिसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन बोलते हैं। वो जीन्स था जिनकी शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। 12,000 साल के बाद इसमें धीरे धीरे म्यूटेशन शुरू हो गया और एक डिस्टिंक्ट जीन तैयार हो गया, उसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन जीन्स बोलते हैं। और वही जीन्स हड़प्पन लोगों में आए। और ये जो जीन्स है वो प्योरली इंडिजिनस लोगों के जीन्स है, यहाँ के लोगों के जीन्स है। तो इसे पता चलता है कि हड़प्पन लोग थे, यहाँ के थे, ये पता चलता है। उसके बाद हमने ये भी किया कि हमने मॉडर्न लोगों का सैंपल्स लगभग 140 अलग अलग जो गुट है साउथ एशिया में, उनके सैंपल्स हमने 3,500 सैंपल्स मॉडर्न लोगों के सैंपल्स हमने इकट्ठा किया और उसका हमने विश्लेषण करके उसको हम हड़प्पन जो सैंपल्स मिले थे राखी गढ़ी उससे हमने जोड़ा, तो उससे पता चलता है कि साउथ एशिया के जो मेजर पॉपुलेशन है हमको एक इंडिकेशन मिलता है। अंडमान निकोबार से लेके लद्दाख कश्मीर तक और अफगानिस्तान से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जो सब लोग हड़प्पन लोगों के ही वंशज है इसका एक प्रमाण मिलता है। वो लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या कास्ट फॉलो करते हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये पता चलता है या एक अंदाज लगता है कि अभी के जो मॉडर्न लोग है वो हड़प्पन लोगों के वंशज है। तो एक कंटिन्यूटी हमको बात दिखाई देते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस हमको राखी गढ़ी से मिला है।
0: राखी गढ़ी की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें शिकार, मछली पकड़ने और संग्रहण के जरिए संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया जाता था। कृषि आधारित पशुओं के साथ साथ जंगली जानवरों के होने के भी प्रमाण मिले हैं।
4: खुदाई से स्पष्ट होता है कि पालतू जानवर राखी गढ़ी में जीवन का केंद्र थे। महत्वपूर्ण पालतू जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर थे। इनका उपयोग आर्थिक और व्यवहारिक कार्यों के लिए भी होता था। गायों का उपयोग परिवहन के लिए और खेतों में काम करने के लिए किया

0: जाता था। बैल और भैंस खेतों में हल चलाने और सामान ले जाने का कार्य करते थे। गाय और भैंस की गोबर भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। लोग इसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में, पार्श्व दीवारों पर प्लास्टर के लिए और ईंधन के रूप में करते थे। इन अनेक उपयोगों से पालतू जानवर केवल खाने का स्रोत ही नहीं रहते, वे खेती, निर्माण और घरेलू जीवन के लिए अनिवार्य थे। भेड़ और बकरी से मांस, दूध और ऊन या बाल प्राप्त होते थे। सुअर भी पाए गए हैं, कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। संभव है कि ये साथियों पहरेदारों के रूप में कार्य करते थे, शिकार में मदद करते थे और बस्ती के आसपास कचरा प्रबंधन में भी सहायक रहे होंगे। पालतू जानवरों के साथ साथ जंगली जानवरों का भी महत्वपूर्ण स्थान। विभिन्न प्रकार के हिरण और एंटीलोप की हड्डियां बताती हैं कि शिकार ने पशु संसाधनों को पूरा किया। शिकार से मांस, छाल और अन्य सामग्री मिलती थी और यह घरेलू पशुओं से मिलने वाले संसाधनों की कमी को पूरा करता था। राखीगढ़ी के निवासियों ने जली और छोटे जानवरों का भी उपयोग किया। मछली पकड़ने जल स्रोतों से संग्रहण का संकेत देती है, जिससे उनकी भोजन में प्रोटीन और विविधता आई। पक्षियों के अवशेष हानि पक्षियों के शिकार या जाल में फंसाने का संकेत देते हैं। सरीसृप और शंखों के अवशेष नदियों, दलदली क्षेत्रों और संभवतः शंख शिल्प या व्यापार के उपयोग में की ओर भी इशारा करते हैं।
1: ये थे पंकज गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज, पुणे।
2: लगभग 4000 साल पहले सरस्वती नदी सूखने लग गई होगी। धीरे धीरे समस्त सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में चहल पहल कम होती चली गई होगी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों में इस सभ्यता के पतन के बारे में मतभेद हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानते हैं।
3: 8000 से 5000 ईसा पूर्व, जिसको आजकल कॉमन एरा कहते हैं, जलवायु के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होती थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बहुत बारिश होती थी 8000 से 3000 ईसा। उसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता आती है, उस वक्त भी काफी बारिश थी। तो ये है कि सिंधु नदी अपने सारे सहायकों के साथ, पांच नदियां पंजाब की, सिंध और सरस्वती, ये बहुत जल का भंडार लेके पहाड़ों से जाके आगे जाके समुद्र में जाती थी। वह समय था जब आदमी ने बस्ती बना के रहने लगा था। दूसरा प्रमाण मेहरगढ़ नाम के स्थान पर है। धीरे धीरे उन्नति होते हुए हड़प्पा संस्कृति, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन हम कहते हैं, नागर सभ्यता का उद्भव होता है। और सारे जो प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है, इन नदियों के किनारे ही बसे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु के, हड़प्पा रावी के, और गवेरी वाला सरस्वती के, कालीबंगा सरस्वती के, बड़ा वाली सरस्वती के, और राखीगढ़ी, और तमाम बहुत सारे प्राचीन स्थान विश्वद्रति के किनारे बसे थे, जिसमें एक प्रमुख हमने बताया अभी जो राखीगढ़ी था, विशाल पांच विशाल तब नगरों में। फिर क्या होता है कि 3000 के बाद थोड़ा धीरे धीरे ये बारिश का कम होने लगती है। खैर इतनी कम नहीं होती, इन्होंने बहुत इंतजाम किया था सिंधु सभ्यता वालों ने तो ये, लेकिन उसके अंतिम चरणों में 2100 से 1900 के बीच काफी पानी कम हो गया। और 1900 ऐसा समय आया जब बिल्कुल बारिश का होना एकदम बंद हो गया। कभी फ्लैश फ्लड्स आते रहे होंगे, लेकिन एकदम जिसे कि एरिडिटी, एक्सट्रीम एरिडिटी हो गई। और उसी समय में ये सरस्वती, सरस्वती और ये इसकी सहायक नदियां सूखने लगी। और वही समय है जब इसके किनारे बसे हुए, जब साफ पंजाब सिंध और इनके सब नदियों के किनारे बसे हुए प्राचीन नगर जो है, नगर और महानगर, ये उजड़ने लगे। यानी कि आज नागर सभ्यता का विखंडन हो रहा। लोग शहरों से क्या करते, भूतहा शहरों में रह के, इसलिए वो गांव की तरफ जत्थे बना के, कोई पूरब गया, कोई दक्षिण गया, कोई उत्तर की तरफ आया। तो इस ढंग से नागर सभ्यता का विखंडन हो गया। तो जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है सिंधु सभ्यता के विघटन में। और एक दूसरा कारण जिसके बारे में आजकल विद्वान नहीं बोलते हैं, 2100 के आसपास मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल उथल पथल हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया और जिसे आजकल इराक कहते हैं, यहाँ भी एक नगर सभ्यता थी बहुत समृद्ध। वहाँ हड़प्पा वालों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध उनसे था, जो वहाँ पॉलिटिकल उठा पथल भी, जिसे 50 से 80 साल तक कहते हैं, वो समय है जबकि हमारे व्यापार पर बहुत धक्का लगा। तो हमने जो उस व्यापार की वजह से, मतलब ये माइनिंग से लेके वस्तु बनाना और लॉजिस्टिक परिवहन वगैरह वगैरह, ये सब पे

0: धक्का लगा कि हड़प्पा की ये महानगर का विघटन होने लगा।
1: लेकिन इतिहास की खोज जितनी जरूरी है उसका संरक्षण उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। हजारों वर्षों तक इतिहास को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले टीले, विशेषकर टीला नंबर 4 और टीला नंबर 6, आज आधुनिक अतिक्रमण और निर्माण का सामना कर रहे हैं। विकास और विरासत के संतुलन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक युद्धवीर रावत के विचार।
2: ऐसा जहाँ भी खुदाई करता है या किसी स्मारक का विकास करता है तो जरूर वहाँ के स्थानीय लोगों को एक तो ISI की काम करने की पद्धति का पता चलता है और उस ढंग से वो भी कई कामों में निपुण हो जाते हैं और उसमें अपना योगदान करते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर गई सामग्री वो स्थानीय बनाते हैं, खास करके खुदाई के लिए जो औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, और स्थानीय लोगों को वहाँ पर ड्राइंग के लिए, सर्वेइंग के लिए हम उपयोग में लाते हैं और उनको सिखाया भी जाता है। साथ साथ उनको जो है विविध जो उपकरण हैं, जो इस चीज के जो है साधन है, उनके बारे में उनको जानकारी होती है, इसलिए उनका योगदान भी इसमें बढ़ जाता है। और खुदाई और अतिक्रमण को रोकने का जहाँ तक सवाल है, ये धीरे धीरे हम लोगों ने कई टीलों को प्रोटेक्शन किया है, उनकी हम जो है फेंसिंग कर रहे हैं और कई जो है टीलों पे हम शेड लगा करके एक जीवंत जो है संग्रहालय बना रहे हैं ताकि लोग जान सके कि क्या क्या वहाँ पर है। तो उसमें भी इन लोगों का योगदान रहेगा और वहाँ पर जो है भविष्य में कई लोगों को जो है गाइड की और इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों का उसमें बड़ा योगदान हो सकता है।
3: राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख नगर है। इस सभ्यता पर हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित है। राखीगढ़ी में एक बड़ा संग्रहालय और हड़प्पन नॉलेज सेंटर बन रहा है। हरियाणा सरकार के पुरातात्विक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार के अनुसार,
4: राखीगढ़ी के टीलों पर राखी, शाहपुर और रोकी खास दो गांव बसे हुए हैं, जहां टीले प्राचीन संस्कृति के वाहक हैं और वर्तमान गांव हैं आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो हरियाणा सरकार इन टीलों और वर्तमान गांव के माध्यम से हरियाणा की 10,000 साल की जो गौरवशाली यात्रा है उसको दिखाने का प्रयास कर रही है। प्राचीन समय में हरियाणा के लोगों की जीवन शैली ऐसी थी और वर्तमान समय में ऐसी थी, और इस यात्रा में क्या क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या बदलाव हुए हैं इसको भी हम विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। राखीगढ़ी में 200 करोड़ की ज्यादा के लागत से एक विश्व स्तरीय म्यूजियम हरियाणा सरकार के माध्यम से बन रहा है और उसमें भी अतीत से वर्तमान की यात्रा है, उस पर भी विशेष फोकस रखा गया है।
1: हरियाणा पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार भविष्य में राखीगढ़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं।
3: स्थानीय युवाओं को हेरिटेज गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना और होम स्टे व सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ना ही इस स्थल को जीवंत बनाए रख सकता है। राखीगढ़ी केवल एक खुदाई स्थल नहीं, एक जीवंत गांव भी है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, जहां किसान अपने खेत जोतते हुए मिट्टी में दबे इतिहास को स्पर्श करते हैं। इस अनूठी सह अस्तित्व की भावना पर राखीगढ़ी के सरपंच दिनेश का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
5: हमारे गांव के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, महिलाएं सबको एक रोजगार के रूप में विकसित गांव धीरे धीरे हो रहा है। हमारे गांव को लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में विकसित करने के लिए हम पुरजोर प्रयास करते रहते हैं और एक एक्सपोजर मिलता है कि देश विदेश से घूमे हुए लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनके आइडियाज हम हमारे साथ शेयर करते हैं और उनको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं उन आइडिया को लेके। तो वैसे ही प्रयास में हमने मतलब एक पूरी बड़ी गाइड टीम को विकसित किया, राखीगढ़ी में ट्रेडिशनल फूड बनाने वाली महिलाओं को विकसित किया है और हमारे जो क्राफ्टमैन है उनका तो कहना ही अलग है। हमारे गांव की कई महिलाओं की दरिया बाहर के कंट्री में बहुत डिमांडिंग है। हमारे गांव की लेडीज जो रोटी बनाने के लिए बोहिया बनाते हैं सरकंडे और पन्नी के, वो बहुत फेमस है। महिलाएं हमारी बाहर के बड़े स्कूल्स में क्राफ्ट वर्कशॉप के लिए जाने लग गई है। आगे के प्लान के तौर पे हम हमारे गांव के 200 साल पुराने चौपाल को एक लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में देख रहे हैं, कुछ हवेलियों को बाहर के लोगों के साथ मिलके विकसित कर रहे हैं।
1: राखीगढ़ी कभी विशाल

0: महानगर रहा होगा। राखीगढ़ी का पूरा रहस्य अभी धरती के गर्भ में ही छिपा है। अभी तो उन रहस्यों से भी पर्दा उठना बाकी है जो लिपि को पढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। युवा पुरातत्वविद डॉक्टर दिशा आलूवालिया ने समय समय पर हुए उत्खनन कार्यों में भाग लिया है। खुदाई के दौरान उन्होंने करीबन 400 मिट्टी की ईंटें निकाली थी। दिशा आलूवालिया का मानना है कि अभी बहुत काम होना बाकी है।
1: अभी बहुत बड़ा हिस्सा है राखीगढ़ी का जो कि हिंटरलैंड एरिया भी है। हमें नहीं पता है कि सिटी का छोर कहाँ खत्म हो रहा था और उसका सैटेलाइट एरिया कहाँ शुरू हो रहा था। हमें अभी तक जो जानकारी है वो स्टैटिग्राफी और जो कितने सालों तक वहाँ ऑक्यूपेशन रहा है हमें वो पता है, बट कितना और बड़ा सेटलमेंट हो सकता है हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। धोलावीरा के जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। राखीगढ़ी में जो बड़े बड़े ड्रेन्स मिलते हैं, हमें वेल्स मिलते हैं और जो लास्ट एविडेंस टैंक का मिला था वो ये बताता है कि एक बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम है, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये मान सकते हैं कि ऐसे बहुत छोटे छोटे जो लोग को लगे कि बहुत छोटी जानकारी है बट रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। राखीगढ़ी में लोग कैसे रहते थे, उनका सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, उनका सिटी का लिमिट कितना बड़ा था, फोर्टिफिकेशन था नहीं था, बैस्टियंस थे, डबल फोर्टिफिकेशन था, सिंगल फोर्टिफिकेशन था, ये सब जानकारी अभी जाननी जरूरी है। बैरियल्स अभी भी एक्सकवेट हो रहे हैं बट उसके अलावा भी हमें ये आगे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि जो जहां बैरियल्स हो रहे हैं, माउंट सेवन जिसको बोला जाता है, जहां मचो हरप्पन बैरियल्स मिलते हैं, वहां पे जो अर्ली एविडेंस मिले हैं अर्ली हरप्पन के, ये दर्शाता है कि जो अर्ली हरप्पन लेवल जो है वो काफी बड़ा रहा है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो साइट पे मिलता है उसका स्केल जानना, वहां से लेके मचौर तक कैसे सेटलमेंट चेंज हुआ है, कैसे सिटी डेवलप हुई है, ये सब बातें जो है, ये कहानी जो है अभी भी बाकी है।
0: उनका ये भी मानना है कि जैसे जैसे तकनीक उन्नत होगी इस पुरातात्विक स्थल को और अच्छे से समझा व जाना जाएगा।
1: GPR मैग्नेटोमेट्री ऑलरेडी प्रोफेसर वसंत शिंदे ने किया है बट उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, टेस्ट पिट्स ले सकते हैं, फील्ड वॉकिंग है, कई ऐसी टेक्निक्स हैं आगे फ्यूचर में आएंगी जो हमें ये एविडेंस बहुत क्लियरली बताएंगी। बट एज ऑफ नाउ अभी हम रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम उस पे काफी मेहनत करें और सैटेलाइट इमेजरी और स्पेशल एविडेंस के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इंडिकेशन लगा सकते हैं साइट के बारे में।
2: राखीगढ़ी की मिट्टी में दबी हर पक्की ईंट एक गाथा सुनाती है, हर मन का एक हुनरमंद हाथ की कहानी कहता है और हर अवशेष उस महान मानव जीवन का साक्ष्य है।
0: सवाल बस इतना है, क्या हम इतिहास की इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं?
3: के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना रूपक, राखीगढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख डॉक्टर अप्पू सहारन का था, वाचन स्वर उषा मलिक व पंकज भारद्वाज का था। कार्यक्रम का संपादन दिलीप अहिरवार ने किया, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रोहतक के सौजन्य से प्राप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। रवि वासरिय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज के प्रसारण में अब हम आपके लिए श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वासरिय अखिल भारतीय संगीत सभा वी विल नाउ ब्रिंग यू द कर्नाटक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत।
0: श्री एनआर प्रशांत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित गायक हैं, जो संगीत क्षेत्र में अपने अभिनव और शोध आधारित असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री एनआर प्रशांत की संगीतमय यात्रा का शुभारंभ बेंगलुरु में विद्वान

0: आर के पद्मनाभ के मार्गदर्शन में हुआ। श्री तिट्टे कृष्णयंगार जैसी महान विभूतियों से प्रेरित होकर आपने विदुषी नीला रामगोपाल के सानिध्य में अपना गहन प्रशिक्षण जारी रखा। तत्पश्चात प्रोफेसर आर विश्वेश्वरन जी के आदरणीय मार्गदर्शन में आपने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म बारीकियों की गहरी समझ प्राप्त की। आपने मैसूर विश्वविद्यालय से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी। आप वर्तमान में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी संगीतमय यात्रा की एक विशेष और अद्वितीय उपलब्धि एक राग संगीत सभाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना है। वर्ष 2001 में आपको सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित एवं नियुक्त किया गया था।
1: श्री एन.आर. प्रशांत इज अ डिस्टिंग्विश्ड वोकलिस्ट इन कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, रेनाउंड फॉर हिज इनोवेटिव एंड रिसर्च ओरिएंटेड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड। श्री एन.आर. प्रशांत म्यूजिकल जर्नी कमेंस्ड इन बेंगलुरु अंडर द गाइडेंस ऑफ विद्वान आर के पद्मनाभा। Inspired by stalwarts like Shri Tite Krishna Iyengar, he pursued his advanced training under the tutelage of Vidushi Neela Ramgopal. Subsequently, under the revered mentorship of Professor R. Vishweshwaran, he gained a deep understanding of the subtle nuances of Carnatic classical music. He earned a degree in engineering in instrumentation technology from the University of Mysore. He is currently a prestigious A-grade artist of Akashvani. A distinct and unique highlight of his musical journey is the successful presentation of the Ekaraga concert series. In the year 2001, he was invited and appointed as a senior faculty member at the Singapore Indian Fine Arts Society.
0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ये राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ही इज अकंपनीड ऑन द वायलिन बाय सीवी श्रुति, ऑन द मृदंगम बाय ए राधेश एंड ऑन द घटम बाय शरद कौशिक।
0: श्री एन.आर. प्रशांत अपने कार्यक्रम का आरंभ स्वाति तिरुनाल की रचना से कर रहे हैं नरसिंह मामवा, जो राग आरभी खंड चापताल में निबद्ध है।
1: श्री एन.आर. प्रशांत begins his concert with the composition of Swati Tirunal, Narasimha Mamava, in Rag Arabhi, set to Khand Chaputal.

0: लीजिए अब आप सुनिए मैसूर वासुदेवाचार्य की कृति देवी रमे मामवाब्दि तनये, जो राग वसंत तथा आदिताल में निबद्ध हैं।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य देवी रमे मामवाब्दि तनये इन द राग वसंता सेट टू आदिताल।

0: श्री एनआर प्रशांत अपने गायन को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं रामनाथपुरम श्रीनिवास अयंगार की एक रचना परम पावन रामा, जो राग पूर्वी कल्याणी आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल, श्री एनआर प्रशांत विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ रामनाथपुरम श्रीनिवास अयंगार परम पावन रामा इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन अब संपन्न होता है। संगत करने वाले थे वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ये राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: विद दैट वी कंक्लूड द कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। He was accompanied on the violin by C.V. Shruti, on the mridangam by A. Radhesh, and on the ghatam by Sharad Kaushik.
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के मैसूर केंद्र पर की गई और इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded at the studios of Akashvani Mysuru and the broadcast came to you from Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा।

0: जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Aditi Lumba. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said relief and rescue operations are continuing on a war footing. She said those found responsible for the incident will not be spared. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Talking to media, Inspector General of the National Disaster Response Force, NS Bundela, said that 2 NDRF teams comprising 70 personnel